0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कुछ ही पलों में सुबह के 5:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: से खबर, टाइम हो गया 10।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

और समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है और इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है और यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास के लिए किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है और विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्तीय वर्ष 2026-2027 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: और अब पेश है प्रायोजक प्रोग्राम।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों जरा सोचिए, जब हम सबको इस संसारिक आजादी की खुशी समेटते नहीं सिमटती, तो जब हम अपने पापों से आजाद होंगे तब हमारी खुशी का क्या ठिकाना होगा, जरा सोचिए। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तुम अपने पापों की जंजीरों से छुटकारा पाओगे तब तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा पुराना व्यवहार, सोच और नजरिया सब कुछ बदल जाएगा और तुम एक नई सृष्टि बनकर पिता परमेश्वर की गवाही बिना डरे उन लोगों की तरह दोगे जिन्होंने अपने पापों की आजादी का स्वाद चख लिया है।

दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में नूह, मूसा, अय्यूब, डैनियल और पौलुस जैसे कई लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने जब प्रभु के प्रेम को जाना और उन्हें अपने पापों से मुक्ति पाने का एहसास हुआ तो उनका जीवन सदा सदा के लिए बदल गया। और यही सत्य वचन है कि जब प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन पर पड़ता है तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है और हम अंधकार की राहों से दूर होकर स्वयं एक ज्योति बनकर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय कर देते हैं।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि दूसरों की भलाई के लिए हमेशा लगे रहो और अच्छे कार्यों को करने से अपने आप को कभी मत रोको और निरंतर अपनी जुबान से प्रभु का नाम और उसकी महिमा करते रहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और सुबह की पहली किरण कहती है हर पल में एक नई कहानी रहती है। और कल की फिक्र को आज भूल जाइए जनाब, क्योंकि ये नई सुबह है और सिर्फ खुशियां ही कहती है कि मैं इश्क में यारो कमाल कर बैठा, लिख के आई लव यू फॉरवर्ड टू ऑल कर बैठा। और जिक्र से फिक्र तक है ना, टेंशन नॉट और मेंशन नॉट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है। और कैसे हो भाई, सारे दिखा दे एक बार फिर से, दिन में तारे सुप्रभात लेकर हाजिर हूं। अक्सर ना हम खर्चा की चर्चा बहुत करते हैं, कहते हैं कि गुजरता वक्त है और खर्च हम हो जाते हैं, लेकिन जनाब फिक्र से जिक्र तक, कहानी में तो जिक्र होना ही चाहिए ना। कहते हैं अक्सर हमारे जीवन में लोगों की यानी कि टाइमिंग थोड़ी सी खराब होती है,

होता है ना, वहां पर कभी शक नहीं होता। शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा था कि जो पूर्ण नहीं हो सके काम, उनको करता हूं मैं प्रणाम। अक्सर लाइफ में ना बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, जो बीत गई सो बात गई, के इंतकाम सारे पूरे किए लेकिन इश्क अधूरा रहने दिया। बोल देना दुनिया वालों से मैं मतलब ही बड़ा था, दुनिया के हर बड़े मुकाम पे तन्हा ही खड़ा था। अक्सर ऐसा लगता है ना कि समय अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए जो चीजें थोड़ी लेट होती है ना वो आपके लिए बेटर होती है, क्योंकि खुद की मर्जी का हो जाए तो वो बेहतर होता है, लेकिन जब आपकी मर्जी का नहीं होता ना तो वो ऊपर वाले की मर्जी का होता है और वो सबसे बेहतरीन होता है जनाब। और खुश रहना सीखिए हर परिस्थिति में। कहते हैं कि कभी भी किसी एक रूप से या एक कंफर्ट जोन में खुद को बांधिए मत। आप गंभीर हो सकते हैं और किसी फिजूल की बात पर जोर से हंस भी सकते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और साथ में थोड़े से कोमल भी हो सकते हैं। दिल तो बच्चा ही जी, कि दिलों के संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं, हमें बच्चा ही रहना, तो जिंदगी बच्चे ही अच्छे हैं। बचपन से लेके पचपन तक का ये सफर कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। आप बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और साथ में कोमल भी हो सकते हैं। आपको मौन प्रिय हो सकता है और फिर भी आप किसी के साथ अपना पूरा संसार भी बांट सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, और इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अक्सर ये जो आप अपने अतीत का बोझा लेकर चल रहे हैं ना कि सामने वाले को देंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग करके उसे थोड़ा अपने पास ही रखिए। पुरानी बातों को भुलाकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चेकलिस्ट, हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन कहते हैं ना कि नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल ना जाए और नीम सदा जल में रहे धोए वास ना जाए। तो किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। और एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। 102.6 FM, दिल से दिल तक, यानी मेरे दिल से आपके दिल तक आवाज आ रही है कि नहीं।

आजकल ना लाइफ में नहले पे दहला, और सबसे बड़ी बात है कि मैं क्यों स्टेप लूं पहला। पहल करने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना घबराने लगे, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। लेकिन जनाब, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपका ईगो है। कई बार आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपको मैसेज ना आ जाए, वी विल गेट बैक टू यू। लेकिन जनाब, वी विल गेट बैक टू यू, ये अपने आप में ही एक बहुत लंबा प्रोसेस है ना। आजकल इतनी छोटी चीजों पर हम आ गए हैं कि हमें लगता है कि सामने वाले को हम पहले क्यों टेक्स्ट करें या माफी क्यों मांगे। अरे, इससे तो हम छोटे हो जाएंगे ना। कभी आपने सबसे विशालकाय वृक्ष को देखा है जंगल में? वो हमेशा झुक कर रहता है कि जरूरत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर दरबार छोड़ आया हूं मैं सजदा किए बगैर। ये जाकिर खान की लाइनें हैं, लेकिन क्या कमाल की लाइनें हैं कि लाइफ में ना कई बार कुछ चीजें कर देनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसा सोचेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा। एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। ऐसा मैं पता क्यों कह रहा हूं, क्या आपने कभी घड़ी की सेकंड वाली सुई को ध्यान से देखा है? वो हर सेकंड केवल एक कदम बढ़ती है। कदम कदम बढ़ाए जा के साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, टग ऑफ वॉर भी नहीं करना है, साथ में चलना है। ना वो दौड़ती है ना वो रुकती है, लेकिन दिन के अंत तक वही सुई 86,400 कदम चल चुकी होती है। वाह, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आप रोज थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा मेहनत करें और थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो एक दिन वही छोटे कदम बड़ी मंजिल तक लेकर जाते हैं। याद रखिए, छोटी छोटी निरंतर कोशिश ही बड़ी सफलता की कहानी होती है, और ये कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि पता है आपको, सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है ना, वो आप किसी को दे सकते हैं, अपना समय। समय, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ मेमोरी टू समवन। Make sure it's a good one. Pardesiya, Pardesi nahi, hum aapke chahne wale hain. 102.6 FM.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। कैसे हो भाई सारे? मैं क्या, नमस्ते अंकल जी और सभी को प्रणाम। एंड सुबह हो गई है, मतलब सबसे पहले अगर हम कहें ना तो कोशिश हमारी यही रहती है कि थोड़ा सा आलस वाला दिन जाए और किसी तरीके से तो हम अपने बॉस को मैसेज करके कहें कि आज ऑफिस नहीं आना है, आज मैं जो है लीड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये संघर्ष ये तो जारी रहेगा जनाब, है ना। लेकिन एक चीज और जारी रहेगी, वो है हमारे दिल से दिल का ये रिश्ता। अक्सर एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक छोटा सा दीपक जल रहा था, तेज आंधी आई और आंधी ने कहा कि मैं तुम्हें बुझा दूंगी। मुश्किल रास्ते पर भी आसान सफर लगता है और कहीं ना कहीं दुआओं का असर लगता है। दुआएं होती हैं तो पर आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, लेकिन

से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूँ। कहते हैं कि कहना जरूरी है सहना नहीं, और बातों में बहना नहीं। बिकॉज आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं ना। वेल, आंधियों में भी जो चलता हुआ मिल जाएगा उससे पूछ लेना, मेरा पता मिल जाएगा। पता बताए क्या? 102.6 FM, सुप्रभात, दिल से दिल तक। कि कहते हैं कि जरा सा सहमा हूं, डरा नहीं हूं मैं, वक्त की आंधियों से टूटा नहीं हूं मैं। राख समझकर ठुकराने वालों जरा ठहरो, अभी अपने ही शोलों में जला नहीं हूं मैं।

मंजिल अभी भी मेरा इंतजार कर रही है, गिरा हूं बस बिखरा नहीं हूं मैं। आपने वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि आरजू झूठ है, फरेब है, आरजू का फरेब खाना नहीं और खुश जो रहना हो जिंदगी में, अगर दिल कभी किसी से लगाना नहीं, गलत बात है मैं कहूंगा दुखाना नहीं। जब आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने सपने जरूर पूरे करने हैं, लेकिन अपने अपनों को पीछे नहीं छोड़ना है। वाह वाह, कमाल की बात कह दी मैंने भी। तो ये जरूरी बहुत है कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो, देखो आसमान भी सबसे ऊंचा होगा। कभी आपने बाज को देखा, ईगल को देखा, किस तरीके से उड़ान भरता है वो? बिल्कुल भी फड़फड़ाता नहीं है, टेक ऑफ करता है और सबसे अलग लेवल पर फ्लाई करता है। उसे लाइफ में जो चाहिए होता है ना, वो प्राप्त ही करके मानता है। एक हफ्ते तक, दो हफ्ते तक, तीन हफ्ते तक सिर्फ निगाहें वैसी ही करनी चाहिए, और फिर देखिए आप, उसके बाद कौन कहता है कि मंजिल हासिल नहीं। मेहनत करते हैं। वल धूप तो निकलने वाली है, लेकिन एक बात एकदम सटीक है कि आप कोई आप जैसा नहीं, आप अपने फेवरेट हो ना।

पता है जब मेरा शो सुनते ना आप तो यही कहते होंगे कोई तुमसा नहीं, वेल एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, एक ही दिल है लेकिन ये दिल आप ही का दीवाना है। कहते हैं आल है चक में आ गया और ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर था, मैं जम के खा गया। ब्रेड पे लगा हो कितना भी बटर, लेकिन कहीं ना कहीं खोलने पड़ते हैं आपको अपने दिलों के शटर, नहीं तो कोई कहेगा कि दया दरवाजा तोड़ दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज अ फैमिली। एंड शुरुआती दौर में आपसे कहा था ना कि प्यार कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, हम्बल तरीके से मुस्कुराकर मिलिए सबसे। और ब्रेकफास्ट की बात हुई थी, जो भी ला रहे हो

हाँ जब ये स्टूडियो में आ जाते हैं ना तो कमाल ही करते हैं ये के उच्च रख सर थले कदे भी ना हो जिथे भी मैं जाऊं उथे रौनक लाऊं लोड़ पई तो सच लई लड़ जाऊं एवितने यारा बब्बर शेर कहाऊं सिंग इज किंग और ट्रिंग ट्रिंग आ चुके हैं स्टूडियो में प्यारे प्यारे रविंद्र सिंह। तो मुझे अब जाना पड़ेगा लेकिन आज से नौ फिर से मुलाकात होगी।

नमस्कार, अब आप सुनेंगे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में लाल किला पर आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है। इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बलूचिस्तान में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना के सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। और अब खेल जगत से समाचार। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में कल भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक सहित भारत के पदकों की संख्या 29 हो गई है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, जय श्रीकाल जी, हार्दिक अभिनंदन है सभी श्रोताओं को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रविंद्र सिंह और प्रोग्राम तो आपको पता ही है, हम यहाँ आते हैं गुड मॉर्निंग करने। किसको? दिल्ली NCR के जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और जहां जहां सुन रहे हैं उन सभी को। तो फिर क्या है, आपको बस आपका इंतजार खत्म हो रहा है और यहां पर आपको अब सुननी है वो बातें, वो जो दिल से दिल तक जुड़ी हैं, और इसके साथ साथ वो जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे जो हमारे पास हमारे पिटारे में इस वक्त मौजूद है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं खूबसूरत से गीत के साथ और उसके बाद बातों का सिलसिला दिल से दिल तक। और कहते हैं सुबह सुबह मधुर मधुर प्यारा प्यारा गीत बन जाए, जो दिल को छू जाए तो बस दिन बन ही जाता है। तो आप प्यार से मुस्कुराइए क्योंकि हमारा दिन आपकी मुस्कुराहट से ही बनेगा।

और बात जब सवेरे की हो तो ये सवेरा अगर हमें खूबसूरत लग रहा है तो भाई साहब यूं ही ये सवेरा खूबसूरत नहीं है। ये खूबसूरत सुबह है आजादी की। ये खूबसूरत सुबह है उन लोगों को याद करने की जो इस खूबसूरत सवेरे को हमें देकर गए हैं। कभी ये सवेरा इतना खूबसूरत नहीं होता था क्योंकि हमारी जिंदगी की सांसें, हमारी जिंदगी, हमारे संघर्ष सब किसी न किसी जंजीर में जकड़े हुए थे। और आज अगर ये खूबसूरत सुबह है तो उनकी देन है जो हमारे लिए अपनी कुर्बानी देकर गए। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिला शक्ति भी थी। दो नाम हम ऐसे बताना चाहेंगे जिनको आप याद करना चाहेंगे, जिनके बारे में सुनना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देकर गए हैं। पहली रानी अहिल्याबाई होलकर। वो न्यायप्रिय थी, दूरदर्शी, जन कल्याणकारी शासन के लिए उन्हें जाना जाता है। जानते हैं उन्होंने देश भर में मंदिरों, घाटों, कुओं, बावड़ियों और सड़कों का निर्माण करवाकर समाज सेवा की अमिट मिसाल पेश की थी। काशी में अन्नपूर्णा मंदिर, गया में विष्णु मंदिर और कलकत्ता से बनारस तक मार्ग निर्माण उनके उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है। धर्म, संस्कृति और जनसेवा उसके प्रति समर्पित अहिल्याबाई को एक दार्शनिक और आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। ठीक उसी तरह एक और है, भीकाजी रुस्तम कामा। भारत की आजादी की लड़ाई में विदेश की धरती से भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली महान क्रांतिकारी थी भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्रांतिकारियों की मदद से 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर उन्होंने भारत का एक प्रारंभिक झंडा फहराया जिसमें हरा, केसरिया और लाल रंग की पट्टियां थे। उन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार जैसे क्रांतिकारी पत्रों के प्रकाशन में भी योगदान दिया। देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली मैडम भीकाजी कामा को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। और कहते ना कि जीवन हजारों कुर्बानियों के बाद खुशनुमा हुआ है, ये सवेरा यूं ही खूबसूरत नहीं है। उन सभी को नमन जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, हमारे कंधे जब आपस में मिलेंगे तो दुश्मन हमारी तरफ आग भी उठाकर नहीं देख सकेगा। और आज की युवा पीढ़ी को यह ध्यान रखना है कि कंधे से कंधे मिलेंगे तो हम सशक्त बनेंगे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बूंदों के साथ बहना कौन नहीं चाहता भाई साहब। और जब मौसम सुहाना हो जाए, बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिरे आकर, तो बस यही लगता है कि कितना खूबसूरत मौसम है जो गर्मी में ठंडे का एहसास कराता है। और यही तो जीवन है ना। तो चलिए मौसम को थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई साहब दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहने वाला है ना। और ये ध्यान रखिए दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम दिशा से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी। तो आपके चेहरे को जब ये छुएगी तो सोचिए कितना खूबसूरत एहसास होगा आपके लिए। वैसे पिछले कुछ दिनों से तो जो मानसून सक्रिय है, अच्छी बारिश दर्ज की गई और 13 अगस्त यानी आज की बात करें तो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने वाला है ना। तो अगर आपको लगता है कि बातें करनी है तो या तो खुद से करें या मौसम से या फिर बूंदों से, है ना।

0: तो बूंदों से बातें तो करनी है, लेकिन एक छोटे से अल्प विराम के बाद वापस लौटेंगे तो हम बताएंगे कि जब ये बातें हम करते हैं ना, तो बातों बातों में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे सिर्फ कहानियां और किस्से नहीं, इतिहास पे लिखे जाते हैं, है ना। बस यूं गए यूं आए।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत

0: डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हमने भी तो यही कहा था कि एक अल्पविराम के बाद वापस आएंगे और बातों बातों में कुछ किस्से कहानी ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पर इतना असर कर जाती हैं कि इतिहास लिख जाता है। और इतिहास लिखने वाले कुछ ना कुछ तो खास करते ही हैं, कुछ नया एहसास उनके जहन में होता है, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर जज्बा होता है। तो वो जज्बा जब आप एक इंसान जगा लेता है तो बस इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाता है। लेकिन 13 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं है, इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए हैं इस तारीख में कई ऐतिहासिक किस्से जो हमें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम तभी तो आगे बढ़ेंगे जब तक जानेंगे नहीं कि पीछे क्या हुआ और हमें कितना आगे जाना है, है ना। चलिए बता देते हैं, 13 अगस्त की तारीख जोड़ लीजिएगा। सर हम आपको बता देते हैं, 1642 से शुरू करते हैं। यहां पर डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव की चोटी का पता लगाया था। सोचिए साहब, अंतरिक्ष में हम पहुंचकर भले ही ना पहुंचे हो लेकिन वहां तक की दूरी को हमने तय कर लिया था अपनी नजरों के जरिए। और कहते हैं ना, नजरिया बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो इन नजरों ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव की चोटी का पता लगाया था 1642 में डच खगोलशास्त्री क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। 1784 की बात करें आज की तारीख में, तो भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। और 13 अगस्त 1814 की बात करें तो दासों के व्यापार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच समझौता हुआ था। 13 अगस्त 1902 की बात करें तो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत हासिल की थी। 1913 में इंग्लैंड के हैरी ब्रेयरली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। 1923 में नवनिर्मित पोलिश बंदरगाह जिडानिया पर पहला समुद्री जहाज आया था, है ना। दिलचस्प के किस्से होते हैं, ऐतिहासिक बातें कि कब कौन सी चीज पहली बार हुई थी और कब किसने किसको पहली बार खेल जगत में मात दी थी। चलिए 1951 की बात करते हैं, भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1977 में अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया। 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति हुई थी। 2004 में यूनानी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलंपिक शुरू हुआ और 2004 में ग्रीस के एथेंस में 28वां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नैना दिलचस्प बातें खेल जगत की भी है और देश दुनिया में क्या कुछ हुआ ये जानने का मौका मिलता है इतिहास के पन्नों से। भाई तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 2008 की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया था। यानी भारतीय कंपनियां विदेश में भी अपना परचम लहराने लगी थी। और 2008 में ही भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRL वेपन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षण किया था। 2008 में ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संघराजन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। और 2012 में लंदन में 30वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। तो देखा ना, इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्ज हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। और कहते हैं कि भाई इतिहास लिखना इतना आसान नहीं, पहले अपने को जानो फिर अपनी कहानी लिखो और वो कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, तभी तो बात बनती है। और ये प्रोग्राम भी कुछ ऐसे कहता है, गुड मॉर्निंग तभी होती है जब हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए अपने वर्तमान को तलाश लेते हैं।

तो जिंदगी है भाई साहब, इस जिंदगी में न जाने कितनी कहानियां हैं जो हमको लुभाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसे हैं जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं, और इस मुस्कुराहट में कितना दम होता है ये तो आपको पता ही होगा भाई साहब। ये मुस्कुराहट को देखकर लोग खींचे चले आते हैं, इसलिए चेहरे पर हमेशा आप भी मुस्कान रखिए, और जब सुबह सुबह उठकर खुद को देखिए तो बस समझिए कि ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत जो तस्वीर है वो आपको सामने नजर आ रही है, इसलिए आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन कोई और भी था इन्हीं पन्नों में दर्ज, जिसकी मुस्कुराहट से लोग खींचे चले आते थे। जानते हैं उनकी अदाकारी, उनका नृत्य, उनका व्यक्तित्व, भाई साहब करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती थी। वो एक ऐसी कलाकार थी जिनकी मुस्कान जो है ना, अभी तक हम मुस्कान की तो बात कर रहे थे, उनकी मुस्कान पर्दे पर आते ही जितने भी लोग हैं ना आए बढ़ते थे, और बस उनकी जो प्यारी से मुस्कुराहट है वो ना जाने कितने लोगों को खींच लाते थे सिनेमा हॉल तक। जानते हैं फिल्मों में अभिनय को नई ऊंचाइयों तक भी उन्होंने पहुंचाया, शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनाया, और सिनेमा के स्वर्णिम दौर में एक से बढ़कर एक किरदार भी उन्होंने निभाए। चाहे प्रेम की संवेदनशील कहानियां हों, या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में हो, या फिर संगीत नृत्य से सजी प्रस्तुतियां, हर भूमिका में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। उनकी फिल्मों के गीत और उनकी फिल्मों पर दर्शाए गए जो दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा की भाई साहब धरोहर माने जाते हैं। अभिनय के साथ साथ भरतनाट्यम में उनकी महारत ने उन्हें एक अलग पहचान दिया। मंच हो या फिल्मी पर्दा, उनकी प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति और कला की झलक साफ दिखाई देती थी, और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय कला जगत की प्रतिनिधि हस्ती के रूप में भी देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिने जगत की दिग्गज अभिनेत्री, प्रसिद्ध नृत्यांगना और पद्म विभूषण से सम्मानित वैजयंती माला जी की। 13 अगस्त 1936 को मद्रास में, वर्तमान चेन्नई में उनका जन्म हुआ था, इस देश की मिट्टी में। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें नमन करते हैं और भारतीय सिनेमा और संस्कृति में उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हैं उनके इस गीत के द्वारा। और लता जी की आवाज तो फिर गीत और खूबसूरत हो जाता है, दिल में उतर जाता है।

तो भैया बस यही है कि गीत अगर आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, क्योंकि आवाज़ लता जी की और एक्टिंग तो आप जानते हैं वैजयंती माला जी की है, और उन्होंने जिस तरह की मुस्कुराहट और जिस तरह की एक्टिंग की थी, बस वो आज भी जहन में रहती है। आप जब भी उन्हें देखोगे तो लगेगा कि क्या खूबसूरती थी उनकी, ज़बरदस्त, और क्या अदाकारी थी उनकी। वैसे कुछ और भी हैं, कुछ अभिनेत्रियाँ जिन्होंने हिंदी सिने जगत में अपनी जो है अपना एहसास कराया, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। उनमें एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, सहज अभिनय और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी, और 70 से 80 के दशक में जो उनकी गिनती होती है फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री में, और उन्हें कहते हैं कि रोमांटिक, पारिवारिक और रहस्य रोमांच से भरपूर फिल्मों में अपने अभिनय क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया था। जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जी योगिता बाली जी की। उनका जन्म 13 अगस्त 1952 को मुंबई में हुआ था, तो जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और अभिनेत्री हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब वो आती नहीं ना पर्दे पर तो लोग दिल थाम कर बैठ जाते हैं। भारतीय सिने के उस अद्वितीय कलाकार को जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अभिव्यक्ति और बहुमुखी अभिनय से करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चाहे बाल कलाकार से शुरू हुआ उनका जो सफर है, बड़े होकर हुआ हुआ हर जगह पर उन्होंने ये बताया कि आखिर एक्टिंग कैसे की जाती है। भाई साहब, उनका सफर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा तक फैला हुआ है, सिनेमा तक, और उन्हें भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी जानते हैं। भाई साहब, है ना, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, आप भी जान लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्रीदेवी जी की, जिनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। सदमा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, लाडला और इंग्लिश इंग्लिश जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आप तो याद करते ही होंगे, आज भी वो दिमाग में बसे हुए हैं। उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से तमाम सम्मान प्राप्त हैं। उनकी जयंती पर भारतीय सिनेमा के इस महान कलाकार को शत शत नमन करते हैं, और कहते हैं उनका गीत ये जो आज भी जहन में है,

0: तो भाई साहब गीत ये कितना भी सुनो हमेशा नया लगता है, और उनकी जो स्टाइल थी वो जिस तरह की एक्टिंग करती थी बस मन करता था उनको देखते ही रहो, और यही तो पहचान होती है एक कलाकार की, वो हमें इतना बांध कर रख देता है, इसीलिए उनको पहली महिला सुपरस्टार कहा था। तो वैसे हम तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, बस हम इतना कहेंगे बस यूं गए और यूं आए।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: तो भाई साहब सुन रहे हैं आप FM रेडियो, हम तो पहले से कह रहे हैं, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह। चलिए फटाफट बता देते हैं कुछ और भी स्टार हैं हमारे पिटारे में जिनका आज जन्मदिन है, तो बता देते हैं जल्दी से क्योंकि ये खेल जगत से जुड़े हुए सितारे हैं। इनका नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। जी हाँ, भारतीय बैडमिंटन के उभरते सितारे सात्विक साई रेड्डी रंकी रेड्डी का जन्म 13 अगस्त 2000 को आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में हुआ था, और पुरुष युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले सात्विक ने भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2022 में उन्होंने थॉमस कप में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष युगल का स्वर्ण पदक और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का कांस्य पदक उनकी उपलब्धियों में शामिल रहा। भाई साहब खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो देश का नाम

विश्व मंच पर रोशन करने वाले बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंक रेड्डी भाई साहब, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और नाम है, वो कहते हैं ना महिला शक्ति की जब बात करें तो उषा नेगीसेट्टी, जो कि महिला मुक्केबाज खिलाड़ी के तौर पर जानी गई। ये भारतीय महिला मुक्केबाज उषा नेगीसेट्टी का जन्म भी 13 अगस्त को हुआ था। आपको भी जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और इन्होंने विशाखापट्टनम में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने भारतीय मुक्केबाजी में अपनी प्रतिभा और संघर्ष के दम पर विशेष पहचान बनाई थी। 2008 की एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया था, गौरव बढ़ाया था। वहीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक भी अपने नाम किया था। उषा विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीतने वाली प्रमुख भारतीय मुक्केबाजों में शामिल हैं और खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की। और कहते हैं ना कि यहां तक पहुंचने के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जज्बा होना चाहिए था भाई साहब। चलिए इस जज्बे के गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं गौर से सुनने वाले गौतम जी। आइए, नक नक कर रहे हैं भाई साहब, मैं गद्दी छोड़ रहा हूं, आप लीजिए लुत्फ उनके गानों का, उनकी आवाज का, उनके अंदाज का। बाय, मिलते हैं कुछ देर बाद।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। नई दिल्ली में लाल किला पर आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है और इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किला के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के

अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। बलूचिस्तान में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना के सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में कल भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक सहित भारत के पदकों की संख्या 29 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: कल मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फिर फासला क्या है, फासला वेल रास्ते की हम बात करते हैं, तो रास्ता क्या है, दिल से दिल तक है। 102.6 FM, दिल से दिल तक। एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से आपके साथ स्टूडियो में जुड़ चुका हूं मैं। एंड हर रोज कहीं ना कहीं वीकडेज में ना बहुत परेशानी होती है, खासकर जब आपका बॉस गुस्से में कहे कि तुम रोज जो है ऑफिस लेट क्यों आते हो, है ना। रोज मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है सर, मैं तो समय पर ही चलता हूं लेकिन मेरी नींद मुझसे पहले ऑफिस पहुंच जाती है। वही एम्प्लॉयज होते हैं जिनसे अगर एचआर पूछे कि एक्सेल आता है तो कहेंगे नहीं डबल एक्सेल आता है। वेल, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और अगर एचआर पूछ ले कि एआई का जमाना है तो आपको आती है एआई लैंग्वेज, तो कहेंगे नहीं एआई जरूर आती है लेकिन वो वाली मैं अदरक हो रही। वेल, अदरक वाली चाय सबके मन को भाए, और जब हम स्टूडियो में आए तो भाई उठ जाए हर एक व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति के उठने के साथ ही आप लोगों को थोड़ी कसरत भी करनी है। एक्सरसाइज करना लाइफ में बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर,

बार नहीं जनाब, बार बार आएंगे। जैसे कि शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर ये फासला क्या है। और देखिए, हर समस्या का समाधान केवल मेहनत से नहीं, सही समय पर सही डिसीजन भी आपको लेने पड़ते हैं। टेक अ गुड डिसीजन एंड बी अ हीरो। इस चीज को, इस बात को थोड़ा सा लाइफ में ध्यान रखिएगा, बिकॉज समय समय बड़ा बलवान है। एक बार समय चला जाता ना, फिर अफसोस जरूर होता है। तो कोशिश करें कि समय के साथ जाग जाइए, और मैं तो कह रहा हूं कि भाग जाइए ऑफिस के।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस तिरंगे की जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, आजादी उन लाखों वीरों की कुर्बानी की याद है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और इसी देशभक्ति के जज्बे को अपने घर घर तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान। तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर

अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पल को सेलिब्रेट करें। यह उत्सव है आजादी का। और सोशल मीडिया पर भी अपनी देशभक्ति की तस्वीर जरूर शेयर करें, क्योंकि तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं, ये हमारी शान, हमारी पहचान और हमारे हिंदुस्तान की आन है।

well. Good morning, Delhi NCR. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab and Kobi to all. आपका host, आपका दोस्त RJ Gautam आपकी खिदमत में हाजिर है. And तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम चाहे दिन चार रहे या ना रहे. लेकिन एक और अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए, एंड खासकर जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं उनको थोड़ा सा अब स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन आ रहा. राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त से सिर्फ वो महिलाएं डीटीसी और कलेक्टर क्लस्टर बसों में, माफ कीजिएगा, मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगी जिनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा. ऐसे में कोशिश आपको ये करनी है कि सरकार ने सभी महिला यात्रियों से अपील की है कि वो 16 अगस्त से पहले अपना एनसीएमसी कार्ड बनवा ले ताकि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रख सके. वैसे शो भी हम जारी रखेंगे. गुड मॉर्निंग वाली जो वाइब होती है ना, यहां पर आपको लगे कि अब थोड़ा सा उठना मुश्किल है.

हर कोई कर रहा है वैसे अपना कर्मा, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, बिकॉज आने वाले समय में माफ कीजिएगा, ये एक शो होस्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, क्रिकेटर रोहित शर्मा जल्द ही एक टीवी शो होस्ट करते हुए नजर आएंगे। एंड अभी इस फॉर्मेट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये जो शो होने वाला है ये पूरा स्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होने वाला है, यानी कि स्पोर्ट्स यारी के मुताबिक ये शो अमेरिका के फेमस शो फैमिली फ्यूड का भारतीय वर्जन होगा, जिसे स्टीव हार्वे होस्ट करते हैं, और ऐसे में मतलब होस्टिंग में भी उतरते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा।

कहीं ना कहीं आपको लगता होगा ना कि हमारा जो देश है वो इतना खूबसूरत है, संस्कृति इतनी खूबसूरत है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में महिला सेनानियों के व्यापक और अक्सर अनकही योगदान को नमन है। यदि आपको लगता है कि आजादी की लड़ाई केवल पुरुषों ने सभाओं और आंदोलनों में लड़ी थी, तो आप इस महान गाथा के आधे हिस्से से अभी तक परिचित नहीं है। अग्रिम पंक्ति की महिलाएं और नमन है, इनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं? इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
10: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
11: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
10: म्यूजिक मस्ती।
12: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
13: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
10: म्यूजिक मस्ती।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
15: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
17: लोग कहते हैं कि एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो जो हर मुश्किल से मुस्कुरा कर लड़ता है ना, और कहता है कि सब ठीक है, उस झूठ के पीछे छिपे हजारों दुखों का राज लिखूंगा। लिखूंगा हर वो एक घटना जिसमें मैं हार कर भी मुस्कुराया। तो लड़ना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है।

दिल्ली का वेदर भी ना आपके बॉस के मूड की तरह कभी भी बदल सकता है, कभी भी खुश कर सकता है और कभी भी ना खुश। और बोनस तो भूल जाइए, लेकिन आज भी ह्यूमिड रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी।

well, कई बार ना आपका छोटा सा इनिशिएटिव किसी की जिंदगी बदल सकता है। बाहरी दिल्ली में भारत नगर थाना अंतर्गत बुनकर कॉलोनी निवासी 9 वर्षीय आयुष ने इस बार का जन्म दिवस पुलिस कर्मियों के साथ मनाया। कक्षा 5 में पढ़ने वाले आयुष ने इच्छा जताई

कि वे अपना जन्मदिन पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के साथ मनाना चाहते हैं और बच्चे की इस इच्छा का सम्मान करते हुए थाना स्टाफ ने उसके लिए विशेष आयोजन किया। तो आप भी कर सकते हैं, रात दिन बदल सकते हैं अपने एक छोटे से स्टेप के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ।

रात दिन आप जिसे चाहते हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं। कहते हैं कि दिलरुबा नजरें मिला। लड़की कहती है पहले आईफोन दिला, लड़का कहता है महंगाई है, लड़की कहती है कल से तू मेरा भाई है, भाईचारा ऑन टॉप। तो मेरे बड़े भाई आ गए हैं स्टूडियो में, रविंद्र सिंह। यानी कि आपको पता ही है

0: मेरे जाने का समय हो गया है. तो जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर. लेकिन आवाज तो सुन लेते इनकी.
1: भाई के साथ चारा क्यों? कोई चारा बचा नहीं है क्या?
0: वेल, इसी अदा पे तो फिदा है.

और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया गया है। नई दिल्ली में लाल किला पर आज स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है। इस कारण से दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान के सुरब जिले में पाकिस्तान के

हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना के सरकार प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। और अंत में खेल जगत से समाचार। बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: तो दिल की तरह ने गाने नए पुराने लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपका दोस्त रविंद्र सिंह। बिना कुछ बोले सिर्फ आपको वो नगमे सुनाएंगे जो आपके दिल में उतर जाएंगे, तो बस आपको करना क्या है, जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलिए एक प्यारे से गीत के साथ शुरू करते हैं ये सफर, दिल की तरह ने गाने नए पुराने।

और अब बात अपने देश की, जिंदगी कुर्बान है अपने देश पर, आन बान शान तिरंगा है, इसलिए हर घर तिरंगा है ना। और बचपन से यादों में सिर्फ एक किनारा, वंदे मातरम। रूप कुमार राठौर साहब की आवाज में और सोनू निगम की आवाज में बहुत खूबसूरत सा गीत है जो हर युवा से ये कह रहा है कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहूं।

0: तो सोचिए, सर पर कफन बांध कर आजादी का यह परचम लहराया हमारे भारत के वीर सपूतों ने, उसको कायम रखना है। तो उस दौर में जो लिखने वाले हैं खूबसूरत लिखा करते थे, और इस दौर में भी वो कहानियां, वो किस्से और वो फिल्में उनके ऊपर बनी हुई हमें आज भी याद दिलाते हैं, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

गाड़ी में उनको घुमाना कोशिश नहीं ना करता, लड़की पक जाती है खुद ब खुद। थोड़ा सा स्टाइल है बेबी, बाकी स्किल है टच वुड, टच वुड, टच वुड, स्किल है, स्किल है, टच वुड, टच वुड, स्किल है। मैं पुजारी जो बन का बन जाऊंगा एक दिन जोग।

0: पल
1: अरे कुछ नहीं होता,
0: मैं तेरा राजा।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

तो प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने गाए नए पुराने, और ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

0: तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप भी ये प्रोग्राम सुनकर उल्लाला जरूर कर बैठे होंगे और आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि गाने ही ऐसे थे, दिल के तराने, गाने ने पुरानों का ये संगम हमने आप तक पहुंचाया। मैं आपके साथ रहा हूं इस पूरे घंटे में, रविंद्र सिंह आपका दोस्त। और अब जिस तरह से ये वक्त धीरे धीरे सुई कुछ बता रही है कि भाई अब आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हो जाने चाहिए जो थोड़ा सा ज्ञान देने वाले हों, थोड़ा जागरूक करने वाले हों, तो चलिए अब सुनते हैं। अब जो वक्त है वह है प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। तो अब से कुछ ही देर में इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए।
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: तो जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, physical health, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, and we usually ignore that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ। सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माई मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली। देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum, some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक

चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है, बट एट द सेम टाइम अ सर्टन आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल, जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली वी आर फाइन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, we are not able to face those challenges, then we start having headache हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, क्योंकि अक्सर हम mental health issues को भी physical का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, but actually the cause may be at the mental level. ये कहना कि कब उदासीपन depression मतलब एक clinical disorder बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई demarcation नहीं है. Generally we say that if it is persistent, I'm just giving an example of sadness depression, which is a very common mental disorder, and it is sadness या depression is commonly used word among the public. So how do we recognize these signs? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बारी पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट अ सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, रिस्पॉन्ड टू फैमिली मेम्बर्स. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं, समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माई इंटरेक्टिव. पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब common बीमारी है, बहुत ज़्यादा checking होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा hand washing होती है, तो OCD, obsessive compulsive disorder. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता है, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो सेकेंड क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट, मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से, दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्पलेसनेस, एंड दे सीक हेल्प, विच वी मोस्ट ऑफन in our peer groups we do not recognize later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को, these may be signs for psychosis.
समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: Welcome back, dear listeners. You are tuned to the Matchless Music Hour, celebrating music from its golden years. Time now for a timeless Hindi favorite to take you down memory lane. It's from the 1950s. The movie is called Patita. Singers are Lata Mangeshkar and Hemant Kumar. Music direction by Shankar Jaikishan and lyricist Hasrat Jaipuri.

sit together on the sofa.

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Well, listeners, before I play the next track, I would like to remind all of you that the next session of Western Music will be at 12 noon today, and that would be a session of Play It Cool. I see a lot of request messages in this session, but my sincere apologies. I'll play your request in the next hour. Up next, Jackson 5 in a beautiful track called I'll Be There.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग OBCA और OBCB प्रमाण पत्र रद्द किए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज का यह मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनाने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड रील्स। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बॉलीवुड की बहुत सारी बातें, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों की बातें आप तक पहुंचाने के लिए पूरे एक घंटे मैं आपके साथ रहूंगी और उसके साथ ही साथ खेलेंगे बॉलीवुड सरताज का क्विज भी। तो हो जाइए तैयार क्योंकि होगी बातों में ही इस बॉलीवुड सरताज के क्विज का राज। जी हाँ, जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

हाँ जी, मैं और तू यानी मैं और आप मिलकर मचाने वाले हैं धमाल, क्योंकि बॉलीवुड की होंगी बहुत सारी बातें। और बॉलीवुड की बातें शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि बॉलीवुड में आज कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिनका आज है बर्थडे। तो सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे श्रीदेवी जी का, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी वो, और 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में उनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही उन्होंने अभिनय का काम शुरू कर दिया था। बाल कलाकार के तौर पर 1967 में तमिल फिल्म कन्नन करुणई में उन्होंने काम किया। उसके बाद बॉलीवुड में भी एंट्री हुई और 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला में उन्होंने काम शुरू किया। मिस्टर इंडिया नगीना

चांदनी चाल बाद सदमा जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत नाम कमाया और आज भी श्रीदेवी जी की जो एक्टिंग है उनके सभी कायल हैं और हम उन्हें आज के दिन याद करते हैं। इसके अलावा आज है बर्थडे योगिता बाली जी का भी और परवाना फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। अजनबी, बदला, झूठा कहीं का, खानदानी ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 70 के दशक में अपनी खूबसूरत अदायगी से उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आज भी हम उनकी फिल्मों को देख करके कायल रहते हैं। इसके अलावा वैजयंती माला, जी हाँ, 1950 से लेकर 1960 के दशक में सबसे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर के तौर पर उन्हें सभी जानते हैं। 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म वजकाई 1949 में जो आई थी उससे उन्होंने शुरुआत की थी और देवदास, नागिन, संगम, गंगा जमुना, ज्वेल थीफ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। तो ये वो हस्तियां हैं जो आज बॉलीवुड में अपना बर्थडे मना रही हैं। हम इन्हें देते हैं बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ बढ़ाते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स की बातों का सिलसिला आगे।

जब देश की बात आती है तो इस समय हमारा पूरा देश सराबोर हो रखा है इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में, और एक हफ्ते पहले से इसकी रौनक हर जगह पर दिखाई दे रही है, तो क्यों ना हम इस रौनक को बढ़ाएं। और वैसे भी बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें हमने कई रंग देखे हैं, उनमें से एक रंग पेट्रियटिज्म पे भी है। और जब फिल्मों की बात आती है तो ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। ऐसी एक फिल्म थी उपकार, 1967 में ये फिल्म आई थी, और ये फिल्म किसी और की नहीं, लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार की थी। और क्लासिक देशभक्ति फिल्म उपकार की बात कहूँ तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे दूरदर्शन में 100 से ज़्यादा बार अभी तक दिखाया जा चुका है। ऐसे कोई पर्टिकुलर डेटा तो इकट्ठा नहीं है, लेकिन हाँ, ये फिल्म अक्सर जब भी कभी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वहाँ पर कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाती थी, और अभी भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर अभिनेता मनोज कुमार ने इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो तैयार की थी, और भारत कुमार के नाम से इस फिल्म में उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था जो उनकी बहुत बड़ी पहचान बन गई। कई ऐसी पेट्रियोटिज्म से भरी हुई फिल्मों में उनका नाम भारत कुमार ही रहा। एक फिल्म इस फिल्म का जो गाना है वो बहुत ही पॉपुलर है। वैसे भी पेट्रियोटिज्म से भरे हुए गाने सभी को पसंद है, और ये गाना मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को, और उपकार का ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
11: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
10: इम्पॉसिबल
11: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
12: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
13: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
14: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
15: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
16: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम में मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। बॉलीवुड की बातें चल रही हैं यहाँ पर और बॉलीवुड में बहुत सारे मशहूर मशहूर गानों के साथ साथ मशहूर मशहूर लोग हैं। हाँ, अगर बात कहें तो कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो आगे भी हम देखना चाहते हैं। वैसे अगर कहें तो एक्टर एक्ट्रेसेस की नहीं बल्कि दो एक्टर अगर साथ में काम करते हैं तो कुछ एक अलग ही मजा देती है, और खास तौर से एक्शन अगर मूवी हो और जबरदस्त एक्शन से भरपूर हो तो फिर एक अलग ही मजा आता है ना उस मूवी को देखने पर। हाँ भाई, एक्शन खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम, और एक्शन के साथ साथ सैफ अली खान भी एक्शन के मूड में थे जब मैं खिलाड़ी और तू अनाड़ी, यानी कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी वो वाला जो गाना है ना, और वो मूवी है जब साथ साथ आए थे अक्षय सैफ, तो किसी ने सोचा नहीं था कि इन दोनों की जो जोड़ी है वो आगे भी बहुत पसंद की जाएगी। और अब लगभग 18 साल के बाद एक बड़े पर्दे में वापसी हो रही है। टशन फिल्म में 2008 में इन्होंने काम किया था साथ साथ, और उसके बाद से एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद अब ये फिल्म में दिखने वाले हैं, और फिल्म का नाम है हैवान। बहुत दिनों से चर्चाओं में है ये फिल्म, और इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर, जैसा कि आपको पता है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, और टीजर में किरदारों को देख करके यही लग रहा है कि भाई अब तो बेहद डार्क और खतरनाक अवतार में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में सैफ अली खान एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट, विजुअली चैलेंज पर्सन बने हुए हैं, और इंडियन ब्लाइंड समुराई इन्हें कहा जाता है, और अक्षय कुमार एक खतरनाक साइकोपैथिक किलर विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और ये फिल्म ओपम जी हाँ, मलयालम थ्रिलर फिल्म है ओपम, 2016 में आई थी। इसका हिंदी रीमेक है। वैसे सुपरस्टार मोहनलाल ने मलयालम फिल्म में इसमें काम किया था, लेकिन अब अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी, सयामी खैर, श्रिया पिलगावकर और असरानी जैसे कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। फिलहाल 11 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इसी फिल्म से रिलेटेड एक और बात बताऊंगी मैं आपको। सुनते रहिए मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हैवान फिल्म से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताऊंगी, तो हैवान फिल्म में अक्षय कुमार अभी कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल किलर के रूप में, और अब देखना ये है कि आने वाले समय में उन्हें कितना पसंद करते हैं लोग। वैसे वो हर रोल में जचते हैं ये तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ इस रोल के लिए प्रियदर्शन की जो पहली पसंद थी वो कोई और था, अक्षय कुमार नहीं थे। और वो कौन थे आपको बता दें, 2023 में एनिमल में विलन का धमाका करने वाले, और एनिमल फिल्म से 900 करोड़ की ज्यादा कमाई की है इस फिल्म ने। और इसमें जो हमारे नेगेटिव कैरेक्टर में थे बॉबी देओल, वो इस फिल्म की पहली पसंद थे। हाँ जी आपको बता दें, तो बॉबी देओल को प्रियदर्शन चाहते थे कि वो इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे, लेकिन किसी वजह से बॉबी देओल ने इस फिल्म को नहीं किया। लेकिन जो सेकंड थॉट प्रियदर्शन के दिमाग में आया कि ये जो मतलब कैरेक्टर है वो किसे प्ले करना चाहिए, तो प्रियदर्शन के दिमाग में तभी भी अक्षय कुमार का नाम नहीं आया बल्कि अक्षय खन्ना का नाम आया। लेकिन अब देखें ना डेस्टिनी को क्या मंजूर था। प्रियदर्शन कर रहे थे फिल्म अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ भूल भुलैया, और इसी फिल्म के साथ साथ भूत बंगला, सॉरी भूल भुले यानी भूत बंगला कर रहे थे, और इसी शूटिंग के दौरान प्रियदर्शन ने उनसे इस फिल्म की हैवान की कहानी साझा की। तो बस एक अलग कैरेक्टर को निभाने के लिए अक्षय कुमार का दिल मचल गया, और उन्होंने बिल्कुल प्रियदर्शन से कहा कि भाई अब मैं ही इस फिल्म में, आप देखिए मैं इस फिल्म में काम करना चाहता हूँ एज अ विलन, आप मुझे इस फिल्म में ये रोल दीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रियदर्शन को भी लगा कि हाँ भाई ये भी एक परफेक्ट चॉइस होगी, तो अब अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा बन गए। तो देखिए ना कितनी अलग सी बात है, और इस फिल्म से जुड़ी हुई कई बातें आपको आगे भी पता चलती रहेंगी जब ये फिल्म रिलीज होगी, और साथ ही साथ अभी तो बहुत समय है रिलीज होने में, तब तक आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बॉलीवुड सरताज का क्विज आपसे पूछेंगे, वेट कीजिएगा हमारा।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: ये है आकाशवाणी।

0: और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और अब बॉलीवुड सत्ता आज का क्विज पूछने का समय हो गया है। और बॉलीवुड सत्ता आज का क्विज बहुत ही इजी है। हमने बहुत सारी बॉलीवुड की बातें की और फिल्म उपकार के बारे में भी बात करी, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फिल्म उपकार में मनोज कुमार जी के कैरेक्टर का नाम क्या था। जी हाँ, फिल्म उपकार में मनोज कुमार जी के कैरेक्टर का नाम क्या था, इसका उत्तर हमें लिख कर भेज दीजिए जल्दी से जल्दी। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अपने नाम के साथ और अपनी जगह के नाम के साथ भेज दीजिए हम तक और बन जाइए आज के बॉलीवुड सरताज।

0: वैसे हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस के बहुत सारे दीवाने होते हैं, और जब भी उनकी फिल्में आती हैं ना अलग अलग जॉनर की, तो हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अक्षय कुमार की बात हो रही थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अलग जॉनर की फिल्म करने वाले हैं वो, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया। और ये जो फिल्म है हैवान, और बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे अक्की भैया हैं वो किसी और चीज़ में बिजी हैं, और एक डिफरेंट टाइप की मूवी करने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि समुख एक फिल्म आने वाली है जो एलियंस पर बेस्ड होगी। जी हाँ, एलियंस पर, सही सुना आपने, एकदम अलग तरह की है ना। हाँ, और अक्षय कुमार जब चर्चाओं का विषय बनते हैं तो वो कई ऐसी फिल्मों के लिए बनते हैं जो बिल्कुल अलग हटके होती है। और ये जो फिल्म है एलियन थ्रिलर मूवी समुख है, और आजकल लाइमलाइट में इसलिए आ रखी है क्योंकि ये फिल्म होने वाली है शूट जल्द ही। 23 अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होने वाली है, और जब कहाँ होने वाली है, लंदन में शुरू होने वाली है। और अक्षय कुमार की कई फिल्में हैं जिनकी शूटिंग लंदन में हो चुकी है, नमस्ते लंदन की बात कर ली जाए, और इसके अलावा सिंग इज किंग, एक्शन रिप्ले, और वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्में हैं जो फिल्म की जो शूटिंग है वो अक्षय ने लंदन में किया। और अब 23 तारीख को ये फिल्म शूट होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। फिलहाल जो शूटिंग है वो 90% लंदन में ही होगी, और उसके बाद ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। वैसे डिफरेंट टाइप की मूवी है, ज़रूर देखने जाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको सुनाते हैं इस देसी बॉय का ये गाना।
1: हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम, फ्रॉम AM टू PM, बंदे एचओ सर्विस मैन।

0: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खां स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: हिमालय की गोद से लेकर
9: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
8: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
9: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
8: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
9: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
8: तो सुनना ना भूलें
9: रेनबो डेस्टिनेशंस
8: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। वैसे कई फिल्में आने वाली हैं, आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और फेस्टिव सीजन में फिल्मों का रिलीज होना तो बनता है, और ऐसे में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है प्रेम कीटाणु। जी हाँ, 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में कौन कौन है बताते चले आपको। बॉलीवुड के एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अक्सर हमने देखा प्यार, मोहब्बत, दिल टूटना और पास फेल, ये सब लगा रहता है

फिल्मों में, और जब जैसा कि टाइटल से काफी ढंग से पता चलता है कि ये जो फिल्म है प्रेम कीटाणु पर है, यानी कि प्रेम पर है, और लव फेलियर्स और इन सब पर उलझी हुई कहानी आपको दिखाई देगी 2 अक्टूबर को। और फिल्म की बात की जाए तो कौन कौन है इस फिल्म में, आपको बताते चले। और इस फिल्म में है वीर पहाड़िया, और वीर पहाड़िया को आपने स्काई फोर्स फिल्म में देखा है, और अब इनकी ये फिल्म आने वाली है। इसके साथ साथ आप इस फिल्म में यानी कि प्रेम कीटाणु में अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी को भी देखेंगे। हाँ जी, अब देखना क्या है कि फिल्म किस तरह की होती है, क्या होती है, ये तो आपको फिलहाल 2 अक्टूबर को पता चलेगा। अभी आप ये गाना एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता

0: आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और अब अनाउंस करेंगे हम आज के हमारे बॉलीवुड सरताज को। हेलो
7: जी मैम, नमस्ते।
6: नमस्ते, कैसे हैं आप?
7: जी नमस्ते
6: जी, आप
7: मुझे और भी अच्छे हो गए आज।
6: और आज आप बने हैं हमारे बॉलीवुड सरताज, और जो प्रश्न था बहुत ही आसान सा था, मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, फिल्म उपकार। इसमें मनोज कुमार जी का जो कैरेक्टर था उसका नाम क्या है, ये आप हमारे जितने लिसनर्स हैं उनको बता दीजिए।
7: जी मैम, भारत कुमार।
6: भारत कुमार, और बिल्कुल सही जवाब है आपका। आज आप हमारे बने हैं बॉलीवुड सरताज, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
7: थैंक यू जी मैम।
6: और आप क्या करते हैं बताएं?
7: मैम आज मुझे बहुत खुशी हुई सच में, बहुत दिन से देरी से जवाब कभी नहीं बननी थी।
6: जी हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और आप अपने बारे में फिलहाल बताएं हमारे लिसनर्स को।
7: जी मैम, मैं तो हाउस वाइफ हूँ।
6: अच्छा, तो हाउस वाइफ है और साथ ही साथ आप हमारे प्रोग्राम्स को भी इंजॉय करते हैं।
7: जी मैम, काम करते करते सुनती रहती हूँ मैं।
6: अच्छा, और कौन से प्रोग्राम सबको बहुत अच्छे लगते हैं?
7: जी मैम बस ये सबसे ज्यादा तो ये अच्छा लगता है वैसे।
6: हाँ, तो चलिए आप हमारे प्रोग्राम के
7: कायल हैं।
6: हाँ जी
7: जी मैम, एक बात हो
6: जी
7: मैम, वो जो होता है ना मेरे वाला सॉन्ग।
6: जी जी जी
7: जी मैम, उसको मैं रिक्वेस्ट भेज दूँ, मेरा गाना नहीं चलता।
6: बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि सभी के गाने प्ले करें, पर क्या करें, इतनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हो जाती है ना कि कोशिश करते करते हम बस परेशान हो जाते हैं। इसीलिए तो 3 दिन है, 3 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों की जो पसंद के गाने हैं वो प्ले हो जाए। कोशिश करते रहिए,
7: एक दिन कामयाब
6: जरूर होंगे आप। हाँ जी
7: जी मैम। जी मैम आज भी हो गए, मैम बहुत दिन से वेट कर रहे थे।
6: कोई बात
7: मैम, मैं ये कह रही हाँ कि मेरा वाला सॉन्ग जो आता है उसमें कैसे कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मतलब नाम लिखना होता है।
6: हाँ, आप उसमें अपना, अब आने वाला है आज ये प्रोग्राम, तो आप अपने पसंद का गाना, उस फिल्म का नाम जिस फिल्म से वो गाना रिलेट करता है, और साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है
7: मैम, पहले जैसे ऐसे जैसे इसमें लिखा मैंने नाम और शहर का नाम और फिर गाना लिख दो।
6: हाँ, आप अपने गाने का नाम, अपने फेवरेट गाने का नाम जो आप सुनना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। अभी फिलहाल आप वेट करिएगा, इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी 1 बजे मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी, और अगला जो प्रोग्राम है वो लिपिका लेकर आ रही है आपके लिए, प्ले इट कूल, उसे इंजॉय कीजिएगा। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, और फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: दादी दादी, महकी महकी, जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
9: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू एफएम रेनबो and you are listening to the program Play It Cool with me, Lupika Das. I'll ask you a question about your idea of a perfect holiday, and we have a response from our very dedicated listener friend from Tamil Nadu, Mr. Rajkumar, who is from Trichy, and he writes, "My perfect holiday will be a lot of resting, forget the clock and go with the flow while reading a few books." He also adds, "My favorite destination for holiday is New Delhi." And the third one, I'm just strolling around CP, now known as Rajiv Chowk. So you have two different kind of holidays in mind. I wouldn't say that resting, forget the clock and go with the flow, reading a few books, it's possible in Delhi, maybe sometimes. But yeah, good to know that your favorite holiday destination is New Delhi, Mr. Rajkumar. I believe you studied here as well. So next song is for you, Holiday by Rema.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
10: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
11: Welcome back, dear listeners. You are tuned to FM Rainbow and you are listening to the program Play It Cool with me, Lipika, where we are talking about sleep holidays and favorite holidays. I've heard a message from our friend,

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आज राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान किए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशीमा का मुकाबला अपने ही देश के ब्रेंट शेल्टन से होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज के हमारे जो बॉलीवुड सरताज बनी थी कृष्णा जी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं बहुत ट्राई करती हूं कि मेरा जो मेरा वाला सॉन्ग है वो मेरा वाला सॉन्ग में प्ले हो जाए, और ऐसी ही कोशिश आप सभी लोगों की रहती है। तो बहुत जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाइए। 9868107070 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और अपनी पसंद का गाना मेरा वाला सॉन्ग में अपनी नाम के साथ, और अगर कोई संदेश देना चाहते हैं, किसी को ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बिंदास होकर के हमसे एक टक बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। अभी फिलहाल जिनका गाना हम प्ले करने वाले हैं, देख लीजिए हम बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि आपके पसंदीदा गीतों को चुन करके आप तक पहुंचाएं, और यहां पर जो हम गाना आपके लिए प्ले करने वाले

मनमोहन सिंह, सोनम काव्या और दक्ष यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से। इन्होंने रिक्वेस्ट की है मेरा वाला सॉन्ग में, दामिनी फिल्म का ये गाना। हाँ जी, आजकल सावन के झूले हर जगह पड़े हुए होंगे, पहले तो होता था लेकिन अब पता नहीं, शायद कहीं कहीं पर तो जरूर होंगे। और उन झूलों में झूलने का एक अलग ही मजा होता था, और आज भी उन झूलों का इंतजार हम सभी को रहता है। क्यों, कई जगहों पर झूले लगाए भी जाते हैं और लोग मस्ती से आनंद से उसका मजा उठाते हैं। चलिए, झूले नहीं पर गाना सही, बिल्कुल सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और अगला गाना जो हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल फिल्म, उन्होंने केसरी की रिक्वेस्ट की है और ये गाना आपकी रिक्वेस्ट पर। देशभक्ति की भावना हर किसी के मन में रहती है, लेकिन उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी तरीके से हम अपना वो जज्बा कायम रख सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगी आपको, सुनिए पहले गीत।

देश की आज़ादी को पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और साथ ही साथ इस देश के मान सम्मान को बचाने के लिए हमारे देश के सैनिक इस देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस करें, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने देश के प्रति। हाँ, हमारा देश के प्रति ये फर्ज बनता है कि हमें अपने देश को ऊंचे पायदान पर लेके जाना है। जी हाँ, बड़े बड़े देशों के साथ अपने देश को आगे खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें करें तो हम ज़रूर से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अपनी देश की रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं भाई, अलर्ट रह करके। आसपास कोई ऐसी घटना घटित हो रही हो जिसे देख करके आपको संदिग्धता प्रतीत हो रही हो तो आप बिल्कुल पुलिस को इत्तला कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आसपास साफ सफाई का बंदोबस्त आप खुद देखें, जी हाँ, अपनी गंदगी को अपने साथ रखें और साथ ही साथ उसे सही ढंग से डिस्पोज करें, ये भी हमारे देश के लिए एक बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर देश को साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कदमों को भी हम सुरक्षित और साफ रखें। और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे ही हो सकता है कि हमें अपने देश के हित के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो करने चाहिए। अच्छा पढ़ाई करें, अच्छी लिखाई करें, अच्छा खेलें, अच्छा बने, ताकि देश का नाम रोशन हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी आपको गाने सुनाएंगे आपकी पसंद के।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
7: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, और अब जो गाने की रिक्वेस्ट हमें की है वो की है किसने, हितेंद्र दास और मनोज दास ने, और इन्होंने डेडिकेट किया ये सॉन्ग ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी परिवार, स्पेशली यू माय फ्रेंड मीनल, रोमेश, अमल, बिमल, राकेवेलिक, नारायण एंड शिवा। थैंक यू वेरी मच हितेंद्र दास जी, और ये लीजिए आपका फेवरेट वाला सॉन्ग।

ठीक है, आपका पसंदीदा सॉन्ग हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। विलेज कुंडली पोस्ट नागेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि असम से ये रिक्वेस्ट आई है।

सुन रहे प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और अब जो गाने की रिक्वेस्ट हम प्ले करने जा रहे हैं, गुट्टू धाकड़ मध्य प्रदेश जैन जिले के बेडावन गांव से इन्होंने ये सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। गांव है भाई, गांव से फिल्म भाई, बेडावन गांव से इन्होंने जो चांदनी गाने की फरमाइश की है, तो लीजिए। वैसे ये सारे गाने इंजॉय करते हैं, लेकिन ये गाना खास तौर से आपके लिए हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सौरभ अरनेजा जी का भी मैसेज आया है, इन्होंने कहा मेरी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं सारे शोज एंजॉय करता हूँ। तो लीजिए, आप एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ आप सुनिए इस गीत को।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
8: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
7: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
9: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
10: इग्नोर नहीं, याद करो।
11: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग में, मैं बबीता रावत हूँ आपके साथ। और अब अगला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं वो है कविता जी का, जी हाँ, उनकी पसंद का सॉन्ग देवभूमि उत्तराखंड टीटी गढ़वाल से उन्होंने सिर्फ तुम के इस गाने की रिक्वेस्ट की है। तो लीजिए आपके लिए।

अगला गाना हम जो सुनाने जा रहे हैं आपको, चंडीगढ़ से फूल कुमार, रेखा, दीपक, ज्योति, साहिल हैं हम सब की पसंद से ये गाना। राम लखन मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिए। तो लीजिए आपके लिए ये गाना।

और अगली रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है रंजीत मुकंदपुर दिल्ली से, इन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए आपके पसंद का गीत मेरा वाला सॉन्ग में, और आप भी अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 9868107070 पर, अपना नाम और अपने जगह के नाम के साथ आपका पसंदीदा गीत और साथ ही साथ उस फिल्म का नाम जिस फिल्म से ये गाना है। अभी ये गाना आपके लिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग

0: भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम है। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ, और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन सब की रिक्वेस्ट पर ये गीत अब्दुल्ला फिल्म से।

और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट गुलफाम खान दिल्ली से शहादरा से, उन्होंने गदर फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है, तो चलिए आपके लिए गीत। साथ ही साथ जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, सोनी, मोहित, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सारे के सारे हमें सुन रहे हैं और अपना नाम सुन लिया ना आपने। देखे ना, हम आपको बहुत याद करते हैं, इसीलिए तो एक सांस में बस आपका ही नाम जपते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: और इस आखिरी गाने के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। छाया रानी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। श्रीदेवी जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है और उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, तो लीजिए आप सभी लोगों के लिए ये गीत और अगले प्रोग्राम को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आशियाना प्रोग्राम लेकर शाहिद आपके साथ होंगे। मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।

दोपहर के 2 बज गए हैं और पेश है फिल्म रेनबो इस समय के मुख्य समाचार। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आज पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान किए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्दो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। नीतीश घंटे के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। हर थर्सडे बात सीनियर सिटीजन की, उनसे जुड़े हुए कुछ सेंसिटिव इश्यूज की, उनकी हेल्थ वेलबींग की, बुढ़ापे में उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो उनके सामने या किसी भी वृद्ध के सामने आ ही जाती हैं। बने रहिए 102.6 पर, यह देश का नंबर वन आपका अपना रेडियो रेनबो, शाहिद है आपके साथ।

102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। हमारे वरिष्ठ यानी हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहद वैल्यूएबल एसेट होते हैं। न सिर्फ परिवार में, पूरे समाज में वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड रीजन फॉर यूनिटी होते हैं। ये हमारे समाज की कीमती धरोहर हैं। इनकी केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इन जिम्मेदारियों में उनके बेहतर स्वास्थ्य, रखरखाव, खानपान, उनकी तकलीफों, बीमारियों में उनके इलाज के साथ साथ उनकी एक रिस्पेक्टेबल फाइनेंशियल फ्रीडम या कहें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जरूरी है।

जिससे वो खुद को असहाय या दूसरों पर बोझ ना महसूस करें। तो आशियाना में बात आज वरिष्ठ के बारे में, वरिष्ठों के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में, सीनियर सिटीजन्स के बारे में। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि देश 15 अगस्त की तैयारी कर रहा है, इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं हम अपना 80वां। तो पूरा देश है पूरी तरीके से तैयार और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है 7 से 9 से 17 अगस्त के बीच। तो आज इसी मौके पर मेरी तरफ से ये एक बेहतरीन पेट्रियाटिक सॉन्ग जो दिल को छू लेता है, हमारे जो बलिदान है आजादी के लिए देशवासियों के, उनको याद करता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। सीनियर सिटीजन्स के साथ बुढ़ापे में रोजमर्रा की छोटी या बड़ी एलिमेंट्स बीमारियों के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है तन्हाई यानी अकेलापन। ये सब बीमारियों से बढ़कर खुद एक बेहद गंभीर समस्या है जिसे अक्सर बूढ़े लोग बुरी तरह से झेलते हैं और शायद वो कई बार कह भी नहीं पाते हैं। कई सीनियर सिटीजन्स मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, साथ के लोगों के साथ हंसते बोलते हैं, एक दूसरे के किस्से कहानियां सुनते और सुनाते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो गंभीर मुद्दों पर गहरी बातचीत भी करते हैं और कुछ नहीं तो इधर उधर की बातों पर कम से कम एक अच्छा समय तो गुजारते ही हैं। लेकिन उनका क्या जो ज्यादातर घर पर ही रहते हैं, बैठे या लेटे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ना ही किसी से मिलते जुलते हैं। ऐसे लोग बीमार ना होकर के भी बीमार हो सकते हैं, तो इनका साथ देना बहुत जरूरी है और मॉर्निंग वॉक या कम से कम बाहर निकालने के लिए उनको उनके साथ निकलना भी, उनको एनकरेज करना भी बेहद जरूरी है। आशियाना आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: आशियाना आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर। हमें अपने बुजुर्गों के न सिर्फ स्वास्थ्य का ख्याल रखना है बल्कि उनके इलाज के साथ साथ उनके अकेलेपन को भी दूर करने का उपाय करना होगा, क्योंकि लोनलीनेस अकेलापन एक भयानक और खामोश बीमारी है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ती रहती है। और हम समझते हैं कि शायद बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई होगी। बुजुर्गों के साथ गुजारे हुए पल, खुशियों की चहक पीढ़ियों के साथ सदियों तक याद रह जाने वाली महकती खूबसूरत खुशनुमा यादें हैं, इन्हें व्यर्थ ना जाने दें। आशियाना में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद होगा स्पॉन्सर प्रोग्राम एनसीईआरटी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
9: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट।

0: श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कोल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
3: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
2: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
3: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
3: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
2: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
2: जी,
3: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचाने।
0: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन,

0: इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
0: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
3: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
3: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु

0: सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आप में ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं करेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का यह पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर।
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने

0: गांव में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
1: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
2: सिपाहियों,
3: यस सर,
2: इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
3: यस सर।
1: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
2: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
1: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे। फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
2: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
4: हवाले कर दे।
2: यस।
1: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
5: ये क्या सर?
1: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूर वीर।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
7: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है, इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो।

0: डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। हमारा आज का विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे करें खुद को मोटापे से दूर ताकि हम रह सके स्वस्थ और तंदुरुस्त। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से अपने आज के इस खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस विषय पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित छाबरा, जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ, और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर निमी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: थैंक यू पूजा।
4: थैंक यू पूजा। और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सशक्त माध्यम पे इतना महत्वपूर्ण विषय हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सरल शब्दों में अगर हम समझे ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है।
3: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
2: जी।
3: और आप ये समझ सकते हैं कि इस समय ओबेसिटी इतनी प्रेवलेंट है
2: जी,
3: हालांकि पहले भी थी, बट इसका कंसेप्ट इस समय इतनी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब ओबेसिटी से रिलेटेड हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पता लगती हैं
2: जी।
3: तो हर इंसान चाहता है कि ये पता लगे कि वो सच में मोटा है कि नहीं। तो मोटापे की डेफिनेशन सही होना जरूरी है। बेसिकली हम मोटापे को BMI के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली हाइट और वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, बट इन जनरल अगर आपका BMI 23-25 है, आप कह सकते हैं रिलेटिवली ओके, बट बियॉन्ड 25 आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आ जाते हैं। बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 26.5 और 27। उसके बाद हमें इसको ओबेसिटी ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं।
2: जी जी। डॉक्टर निमी, आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगी?
4: पूजा, जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अगर 5-6 साल पहले 24% लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा पाया जाता था, तो अब धीरे धीरे वो बढ़ के 30% से ऊपर हो रहा है। और शहरी इलाकों में तो आप सोचिए बिल्कुल एपिडेमिक ही आ गई है मोटापे की। अब जो है 42-43% लोग अपने तय सीमा से वजन से ज्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है ये।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे।
2: जी जी। श्रोताओं, सुना आपने, डॉक्टर निमी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। डॉक्टर अमित, कौन कौन से कारणों से कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होता है?
3: बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
2: जी।
3: देखिए, ओबेसिटी का मतलब ये जरूर हमने बताया कि वेट गेन होना, एक वेट गेन की हमने लिमिट भी सेट कर दी
2: जी।
3: बट ये देखा जा रहा है कि इस समय जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दे आर द मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन शैली
2: जी।
3: हम लोगों के पास ना तो रात में सोने का टाइम है, ना प्रॉपर रेस्ट का टाइम है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फूड टू ईट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और इस वजह से हमारे कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जैसे लेप्टिन, रेलिन, इनका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है। अदरवाइज और दूसरे हार्मोन्स हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दीस डेज। अदरवाइज फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर्स, कुशिंग डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि नॉर्मली हम फाइंड आउट कि जब भी डायबिटीज ओबेस पेशेंट आता है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस आल्सो। जेनेटिक इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट।
2: इस पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे सर आपसे जी। एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले इनका कॉल ले लेते हैं सर।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: हेलो
5: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
5: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ
2: जी।
5: मेरे 3 क्वेश्चन है
2: जी।
5: पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर कोई बच्चा या बड़ा आदमी मोटा हो जाता है, मोटा खाने से नहीं होता है। लोग ये कहते हैं कि तुम केला खाओगे, ये खाओगे तो मोटा हो जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज से के खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, तो उसका वेट कैसे कम किया जा सके, एक तो ये बताएं। नंबर 2, जो आज लड़कियां या लड़के 20-22 साल के हो जाते हैं, शादी के काबिल हो जाते हैं, वो अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो डाइटिंग करना क्या उससे वेट लॉस होता है? क्या शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं? क्या उसके विटामिन लॉस होते हैं या नहीं होते हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये है, जो आदमी 100 किलो से ऊपर होते हैं या 80-90 किलो से ऊपर हो जाते हैं और वो ऑपरेशन कराते हैं, और ऑपरेशन कराना क्या रिस्क?

0: की है या रिस्की नहीं है या ऑपरेशन कराना ठीक होता है, ये तीन क्वेश्चन
1: जी। डॉक्टर साहब
2: जय किशन जी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं बहुत ही शॉर्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल जो पूछा कि ये जो बच्चे जो आजकल कुछ भी खा लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो हेल्दी फूड है वो हम सब बच्चों को बोलना चाहिए कि वो खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगेन एक्सरसाइजेस की कमी, स्पोर्ट्स का टाइम कम हो गया है, तो इस वजह से इनको कुछ भी खाने पे जल्दी वेट गेन करने लगते हैं। तो इनको जो भी गुड फ्रूट्स दें, फाइबर रिलेटेड डाइट दें, और फ्लूड इनटेक भी बहुत कम हो गया है, एंड दे टेक लॉट ऑफ फैट, फैटी फूड्स आल्सो। तो हमें बच्चों को ये करना चाहिए कि इन चीजों को, फैटी फूड्स को या स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये वाली चीजें ज्यादा बोलें। रिगार्डिंग दो आपने अदर क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो नॉर्मली हम सभी लोगों को बोलते हैं कि विटामिंस रिलेटेड चीजें जैसे अच्छे से खाएं, जैसे मैंने भी बताया फ्रूट्स रिलेटेड। तो अगर आप वेट लॉस काफी ज्यादा करते हैं और बिल्कुल न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते तो ये सब चीजें हो सकती हैं। फेस पे रिलेटेड जो झुर्रियों की बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा वेट है आपका 150-200 किलो और उसमें आप 40-50 किलो कम कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट आज की डेट में हम मेडिकल साइंस रिलेटेड बहुत ही मॉनिटर्ड ग्रेजुअल वेट लॉस कराते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ एंड हेल्दी, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है।
3: जी, डॉक्टर अमित ने जो कहा उसमें तीन या चार कहिए शाश्वत सच मैं जोड़ देती हूँ अपनी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट घटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आपके हाथ में है तो बढ़ने ही ना दीजिए। दूसरा ये कि क्रैश डाइट्स नेवर वर्क, कभी भी क्रैश डाइट काम नहीं करती है, थोड़े समय के लिए कर सकती है बट ज्यादा उसका अच्छा असर नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है कि बच्चे बैठे रहते हैं, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और चौथा कि नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं ढंग से तो आप वेट नहीं घटा सकते।
1: जी, इस पर मैम हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। मैम, अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनमें मोटापे का क्या कारण होता है?
3: देखिए, जनरल कारण तो डॉक्टर साहब ने बताया आपको। अब जहां तक महिलाओं की बात है तो मेरा कार्य क्षेत्र ही महिलाओं के बीच में है, 15 से 70 साल के बीच में। तो महिलाओं के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है कि उनको कुदरत ने उनके शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनको कुछ फिजियोलॉजिकल अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ यू नो द रेसेस। तो उनको मासिक धर्म भी होता है, उनको प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चे को दूध पिलाना होता है, फिर मेनोपॉज होता है, गर्भनिरोधक भी उनको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हार्मोन के साथ, यानी कि जो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं, उसके साथ काफी खिलवाड़ करती हैं। कभी कोई हार्मोन ऊपर हो जाता है, कभी कोई नीचे हो जाता है, कभी उनको क्रेविंग्स होने लगती हैं तो वो बिंज ईटिंग करती हैं। प्रेगनेंसी में तो सब लोग उन्हें ठूस ठूस के खिलाते हैं, बच्चा हो जाता है तो उन्हें भूख ज्यादा लगती है, मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी भूख मर जाती है। तो भाई, महिलाओं का तो हाल बेहाल है
1: जी।
3: लेकिन सब कुछ मैनेजेबल है अगर आपको अवेयरनेस हो।
1: तो सुना आपने, डॉक्टर निमी ने कहा कि सब कुछ मैनेजेबल है अगर आप अवेयर हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, इस खास विषय पर बातचीत जारी रहेगी। पहले सुनते हैं ये गीत।

0: लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं डीलिंग विद ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे खुद को मोटापे से रखें दूर ताकि हम रह सके स्वस्थ और तंदुरुस्त। और इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा ओबेसिटी से बढ़ता है।
1: बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्वेश्चन है क्योंकि जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है ग्रेजुअली हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करने लगते हैं
0: जी।
1: और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप जेनेटिक हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज की तो डायबिटीज सामने आ जाती है।
0: टाइप 2 डायबिटीज
1: थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जैसे वेट बढ़ता है तो वेट का डिपोजिशन भी होता है आर्टरीज में, तो दीज पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा वेट बढ़ने पे ज्वाइंट्स में इफेक्ट आता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है
0: जी।
1: और वेट बढ़ने से आपने देखा होगा स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी बोलते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: फिर ये फैट कहीं डिपॉजिट होता है अलग अलग एरियाज में जिसमें मोस्ट कॉमन एरिया है लिवर, तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। पहले इतनी कॉमन नहीं थी, केवल बहुत ही ओबीस पेशेंट में हम लोग हमारे पास आते थे। अब इवन वी सी कि इंडियन पेशेंट में खास तौर से सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, मतलब फैट हमारे पेट में ज्यादा जमता है एज कम्पेयर टू अदर एरिया।
0: इसका रीजन क्या है सर?
1: हमारे जो जेनेटिक मेकअप इतना ज्यादा प्रीडिस्पोज है
0: जी।
1: कि वी टेंड्स टू हैव द हायर डिपोजिशन ऑफ फैट ओनली इन द सेंट्रल पार्ट जिसे हम विस्ट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये विस्ट्रल और सेंट्रल ओबेसिटी इस तरह वर्क करती है कि दे एक्चुअली कॉसेस द डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑल्सो।
0: ओके,
1: तो इसलिए ये देखा गया कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में जैसे कि यूएस में, यूके में, वहां पे दे आर ऑलरेडी हैविंग वेरी हाई बीएमआई, मोटे रहते हैं, पर कार्डिक प्रॉब्लम बहुत लेट होती है। हम लोग जिसको बोलते हैं बिल्कुल ठीक दिख रहा है बस सेंट्रली उसका वेट ज्यादा है, दे आर एक्चुअली मोर प्रोन फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हम लोग बहुत अर्ली फेज में इंटरवेंशन करना चाहते हैं ताकि जल्दी वो फैट रिड्यूस करके नॉर्मलाइज हो पाए
0: जी। डॉक्टर निमी, पेट फूलना जैसे सर ने बताया, लगातार सांस फूलना, पेट का आकार बढ़ना, अत्यधिक थकान महसूस होना, ये भी ओबेसिटी के अलार्म साइंस में शामिल है, क्या कहेंगे आप?
2: डेफिनेटली ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है ये हम विमेन में भी देखते हैं
0: जी।
2: और अगर आप शुरुआत से चलें तो ये कॉज एंड इफेक्ट दोनों है, यानी कि वेट बढ़ने से ओबेसिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से वेट बढ़ जाता है, तो इंसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। इट्स लाइक कैच 22 सिचुएशन, लाइक पीसीओडी ही ले लीजिए, वजन का गेन करना पीसीओडी का एक कारण भी है और एक उसका इफेक्ट भी है
0: जी।
2: आप हमेशा ये पीसीओडी की पेशेंट को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना वजन घटाइए। अब यंग लड़कियां हैं उस एज में नहीं होता पॉसिबल, तो हम उनको बैठ के जब समझाते हैं कि देखिए ये जो फैट लेयर है यहां आपका हार्मोन कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बट समझ आ जाता है। इसीलिए

0: मैं तो ये कहूंगी कि जानना बहुत जरूरी है. अगर आपके यहाँ यंग लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जिनको आप पीसीओडी के लक्षण देख रहे हैं, तो आप उनको हेल्दी खाने के लिए प्रेरित कीजिए, घर का बना खाना खिलाइए, और उनको मूवमेंट के लिए इनकरेज कीजिए, जो कि इसका मेन स्टे है.
1: जी मैम, आपने पीसीओएस की बात की, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, और एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसके बारे में भी हमें बताइए कि ये मोटापा बढ़ाने में कितना सहायक होता
0: पूजा,
1: है।
0: आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरी ओपीडी में 10 पेशेंट्स आते हैं तो 3 या 4 केसेस ऐसे होते हैं जो या डायरेक्ट पीसीओडी है, या पीसीओडी की वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा, या पीसीओडी की वजह से मेनोपॉज जल्दी हो गया है.
1: जी
0: एंड तमाम तरह की उसका बेसिक कारण पीसीओडी होता है. और पीसीओडी
1: जी
0: एक कारण नहीं है, एक सिंड्रोम है
1: जी
0: जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, जो कि मोटापे का भी एक कारण बनता है. तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको अगर हम शुरू में ही रिवर्स कर दें तो
1: जी
0: हम लॉन्ग लास्टिंग से रिकवरी पा सकते हैं. अदरवाइज हर चीज में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ठहरने में, मेंटेनेंस में, बच्चे में भी इश्यूज आ सकते हैं, आगे चल के डायबिटीज हो
1: जी
0: सकता है. तो हम अपने लिसनर्स को डराना तो नहीं चाहेंगे, बट
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: पीसीओडी का पूरी तरह से इलाज पॉसिबल
1: मैम,
0: है.
1: इसके लक्षण क्या क्या हैं?
0: सो पीसीओडी में नॉर्मली एक्ने आते हैं फेस पे, फेशियल हेयर आते हैं, पीरियड्स लेट हो जाते हैं, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, और वजन बढ़ता है.
1: इरेगुलर
0: जनरली
1: पीरियड्स।
0: इरेगुलर पीरियड्स हैं कि 2-2 महीने तक नहीं आ रहे हैं. और अक्सर हमने एक और बात देखी है, डॉक्टर अमित मेरे से सहमत होंगे, कि पीसीओडी केसेस में जब हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री, तो कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट डायबिटिक निकलता ही है. तो
1: उसकी वजह
0: इसका
1: से पीसीओएस पीसीओडी बढ़ता है क्या? हो
0: डेफिनेटली
1: सकता
0: उसका एक लिंक है,
1: लिंक है। जी
0: मैकेनिज्म का, जिसका कारण एक ही है दोनों का,
1: जी जी
0: लेकिन पीसीओडी फिर वो उजागर हो जाता है हमारी यंग
1: जी
0: लड़कियों में.
1: जी महिलाओं पर मैम।
2: हम
1: और जी जी सर बताइए।
2: इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे वेट गेन होता है एंड फैट सेल डिपॉजिट्स होते हैं,
1: जी
2: तो पीसीओडी का एक पार्ट है कि टेस्टो और ईस्ट्रोजन का जो लेवल और रेशियोज चेंज होने लगते हैं
1: हार्मोन्स के। जी
2: हॉर्मोन्स के, एंड दिस इज द मेन रीजन कि ये परसिस्ट करता रहता है. वेट रिड्यूस होने से वी विल रिड्यूस द फैट सेल्स,
1: जी
2: तो हॉर्मोन्स का चेंज ओवर रिड्यूस हो जाता
1: जी
2: है. और दिस इज अ वेरी राइट कि बहुत सारे पेशेंट जेनेटिक हिस्ट्री में भी डायबिटीज होते हैं, और पीसीओएस भी आगे चल के जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो भी डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते
1: हो
2: हैं.
1: सकते हैं। जी
0: पूजा, कोविड के टाइम पे बहुत
1: जी
0: केसेस वर्सन हुए,
1: जी
0: क्योंकि बैठे रहे लोग, बाहर नहीं निकलना हुआ. सो अब जो है, अब उनके असर हम सामने देख
1: देख रहे
0: रहे
1: हैं।
0: हैं.
1: एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो
3: हेलो,
1: जी
3: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी
3: अभी जैसे मैम ने जिक्र किया कि वेट गेन करना इज इजियर देन लूजिंग द वेट,
1: जी
3: मगर मैम मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। मैं पिछले 6 साल से मेरा वेट कम हुआ है।
1: अच्छा।
3: और आई एम 53 नाउ।
1: जी
3: और 6 साल पहले मेरा वेट कम होना शुरू हुआ 58 से आई वेंट डाउन टू 39 एंड नाउ आई एम 45। इसके ऊपर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है।
0: ओके, आप मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप फॉर्चुनेट हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पैथोलॉजी का एहसास हो रहा है. तो प्लीज अपने चेकअप कराएं, वेट घटना भी अच्छी बात नहीं है. आपको अपनी हाइट और वेट के और उम्र के हिसाब से एक तय सीमा में ही रहना चाहिए. प्लीज अपने थायराइड लेवल्स चेक कराएं, आई एम श्योर आपने कराए होंगे, बिकॉज थायराइड जब ओवर एक्टिव होता है तो वजन जल्दी जल्दी बढ़ता है. और भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसपे डॉक्टर अमित प्रकाश डाल सकते हैं, बट इवन दैट इज नॉट हेल्दी. आपको जरूर इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए.
1: डॉक्टर अमित आप क्या
2: कहेंगे? अगर वेट आपका पहले से ही रिड्यूस्ड है, वो मेंटेन है, एंड यू वांट टू गेन वेट, दैट्स अ डिफरेंट इशू. इन दैट सिनेरियो वी नीड टू वर्क आउट आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अदर चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं. बट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं वेट, जैसे डॉक्टर निमी ने बताया कि डेफिनेटली थायराइड द मोस्ट कॉमन रीजन, बट अदर रीजन्स भी हैं, जैसे कि आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, विटामिन डिफिशियंसीज हैं, इवन एड्रिनल इनसफिशियंसीज आर ऑल्सो देयर, एंड कुछ लिवर एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. तो पूरा वर्कअप डेफिनेटली आपको करवाना
0: मेरे
2: चाहिए.
0: मेरे ख्याल से बुलीमिया और एनोरेक्सिया भी कारण हो सकते हैं.
2: डेफिनेटली इफ दे आर रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट.
1: जी जी जी डॉक्टर निमी, हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाएं अलग अलग उम्र में अलग अलग बदलावों से गुजरती हैं, जैसा आपने बताया अभी, ये कितना असर करता है वजन बढ़ाने में? और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि गर्भावस्था संबंधी समस्याएं होती हैं जो ओबेसिटी से, उन दोनों के बारे में बताइए.
0: जी देखिए, गर्भावस्था में नेचुरली एम्फेसिस किया जाता है कि आप 2 लोगों के लिए खाइए, लेकिन वो 2 लोग में से जो दूसरा इंसान जो भी आपके पेट में पल रहा है, वो तो मुश्किल से एक

0: दो ढाई किलो का है तो उसके लिए आपको डबल द कैलोरी नहीं खानी,
1: नहीं खानी,
0: आपको क्वालिटी डाइट लेनी है ताकि बच्चे के अंग अच्छे से बने, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपको एनीमिया ना हो। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि आपकी जो है 2000 से 4000 कैलोरी कर लीजिए, तो हमारी ना रेफरेंसेज ही गलत हैं शुरू से। हम ये सोचते हैं प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया, कोई बात नहीं, सबका बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी रेफरेंसेज रीडिफाइन करनी होगी कि प्री प्रेगनेंसी लेवल पे अगर हम वापस ला सकते हैं जैसे सेलिब्रिटीज लाती हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि उसके फायदे आप आगे वाली उम्र में जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा कहना है।
1: डॉक्टर निमी, अगर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वजन कंट्रोल में रहे और जो प्रेगनेंसी की वजह से वजन बढ़ा है वो भी कंट्रोल?
0: पूजा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है, आपको जब आप लैक्टेट करते हैं, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, एक तो पहली बात दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए नहीं, वो माँ के लिए भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज उसकी यूट्रस वापस अपनी शेप में आ रही है, उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व होके मिल्क प्रोडक्शन में उसका कैलोरीज लग रही हैं। तो उस स्टेज पे अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक को थोड़ा कम कर लें, अपनी पोर्शन को कंट्रोल कर लें, तो हो ही नहीं सकता कि वापस आप अपने नॉर्मल वेट पे ना आए। हाँ, थोड़ी बहुत टोनिंग की जरूरत है, बिकॉज लैक्सिटी हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स की, तो थोड़ा बहुत वर्जिश आप करेंगे तो वापस उसी शेप में आ सकती हैं, और लोग आते हैं
1: जी।
0: तो जैसे पहले बोलते थे 10 से 12 किलो आपको गेन करना है, नहीं, अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो प्रेगनेंसी में आप 8 किलो 6 किलो 7 किलो में भी आप अच्छे से हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर वापस अपने शेप में आ सकती हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अलग अलग जो स्टेजेस हैं महिलाओं के, उनकी एज के, उनमें अलग अलग तरह के बदलावों से वो गुजरती है, कितना असर करता है वजन बढ़ाने में?
0: देखिये, मेनोपॉज में हमने देखा, और आजकल हो क्या रहा है कि मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, लाइक 45, 44, 43 पे मेनोपॉज हो जा रहा है।
1: तो इसका वही लाइफस्टाइल
0: है, हार्मोनल चेंजेस हैं, पीसीओडी है, बिकॉज ओवरीज जो है जल्दी अपना काम बंद कर रही हैं, सो इट्स वेरी अलार्मिंग, बट इस पे फिर कभी एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मेनोपॉज में यूजुअली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो फैट डिपोजिशन ऑन द थाइज, ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आता है, और अगर आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, अगर आपकी फैट पॉकेट्स ही बनी हुई है उस एरिया में, तो फैट जाके वहीं पे बढ़ने लगता है, तो ये बहुत कॉमन वो है, बट देर आर वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल इट।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि कितनी इम्पोर्टेंट बातें आज हम जान रहे हैं हमारे खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। डॉक्टर साहब, आप दोनों से बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं हमें। अब एक गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और ओबेसिटी से जुड़े सवालों पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी और इस पर हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। मैम, हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो खान पान हो गया है जैसे फास्ट फूड, क्या ये मोटापे का मुख्य कारण है? और दूसरा, वर्कआउट ना करना, क्या ये भी ओबेसिटी का ही मुख्य कारण है?
2: अमित जी, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिस तरह का खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है या फिर उसको आपको सिग्नल दे रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम एज अ रूल ऑफ थंब अपने पेशेंट से कहते हैं कि 80% घर का बना खाना खाइए। अब आप मुझे बताइए अपने कलीग्स में देख के कि कौन लोग ऐसे हैं जो 80% खाना घर का बना खाते हैं
1: जी।
2: और हम लोग पिज्जा, बर्गर और इस नूडल्स वगैरह को क्यों हम दोष देते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में भी जलेबी, रसगुल्ले, कचौड़ियां, समोसे, ऐसी चीजों की फरमाइश की जाती है। तो ये हिंदुस्तानी जंक फूड भी अच्छा तो नहीं है। और एक ही जगह पर बैठे खाना और उसके बाद उसको स्पेंड ना करना, उसकी कैलोरीज को स्पेंड ना करना, ये तो कहीं ना कहीं आपको असर दिखाएगा ही। तो ये तो जाहिर सी बात है।
1: जी जी जी। मैम, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखनी है कि डॉक्टर, फैटनेस कुड बी ऑफ टू रीजन इन वुमेन। फर्स्ट इज ड्यू टू जंक फूड एंड सेकेंड ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस। बट ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, हाउ द फैटनेस रिफ्लेक्ट्स इन द बॉडी एंड विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी?
2: देखिए, जंक फूड की जहां तक बात है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले दो खाने हैं। तो अगर आप कार्ब्स खा भी रहे हैं तो आप उन खानों को खाइए जो आपके शरीर में कम घुलते हैं
1: जी।
2: और मैं तो देखिए, मैं ये एडवाइस देती हूं कि आप अपने खाने में से कार्ब्स को कम ही कर दीजिए
1: जी।
2: और अगर खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट के बाद चलना जरूर है, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती हैं कि आप अगर

0: खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं या सो जाते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैट ज्यादा होता है।
1: जी
0: तो आप 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लें, खाना जल्दी खा लें, तो वो आपको चर्बी के तौर पर नहीं लगेगा।
1: जी
0: एक सिंपल सा हैक है, वो आप अपना सकती हैं। और प्रोटीन, प्लीज, मैदा से बनी जितनी भी चीजें हैं आप उनको जहर समझ के छोड़ दीजिए।
1: जी
0: चीनी से बनी जितनी भी चीजें हैं, आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए बड़ा बड़ा अपने सामने, चीनी एक तरह का जहर है, मैं चीनी नहीं खाऊंगा।
1: जी
0: ये बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, बट हाँ ऐसा है, चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब जितने कोल्ड ड्रिंक, जितने जूसेस आप सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, नहीं, उनको छोड़ दीजिए,
1: जी
0: प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। और प्रोटीन का बड़ी मजेदार वाक्य सुनाती हूँ पूजा। में एक पेशेंट से मैं कह रही थी कि देखिए प्रोटीन खाइए, तो बोलिए प्रोटीन पाउडर तो बड़े महंगे होते हैं। अरे भाई, मैं पाउडर की बात नहीं कर रही हूं,
1: जी
0: आपके किचन में जो खाना बनता है उसमें जो प्रोटीन है उसको खाइए। दालें हैं जिस तरह से,
1: जी
0: दूध से बनी चीजें हैं, और जो मोटा अनाज है उसमें भी प्रोटीन होता है।
1: जी
0: क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोटीन के बारे में जानकारी कम क्यों है?
2: एक्चुअली प्रोटीन नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाने में खाते हैं वो नॉर्मली प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है, जैसे लेट्स सपोज 100 kg ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड,
1: जी
2: 100 to 125 और 150 ग्राम, बट हम लेते हैं नॉर्मली प्रोटीन कम है क्योंकि हमारी हैबिट है कि कुछ लोग तो एग नहीं खाते हैं या फिर कुछ दाल नहीं खाते हैं। तो ओवरऑल हमें एक प्रॉपर प्रोटीन बेस्ड डाइट का एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए एंड शुड इंक्लूड मोर ऑफ दैट।
1: जी
2: जब ये मिसिंग हो जाता है, जैसे पर्टिकुलरली जो जिम गोइंग पर्सन या जिनको बहुत हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन एड ऑन द एक्स्ट्रा प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड।
1: जी डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से लिख रही हैं कि वो डायबिटिक और थायराइड पेशेंट है, उनका वजन जो है 48 या 49 kg ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, क्या ये ठीक है? आप इन्हें एडवाइस
2: या
1: करें।
2: ऑल दो
1: जी
2: इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई है,
1: जी
2: बट हम ये मान के चलते हैं कि 49-48 तो बहुत ज्यादा वेट नहीं
1: जी
2: है। और डायबिटीज को थायराइड पेशेंट में खास तौर से हम वेट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, इनफैक्ट वी ट्राई टू मेंटेन द वेट और स्लाइटली रिड्यूस इट।
1: जी
2: तो ये इनके लिए अच्छा है, लेकिन जब कभी ये वेट गेन करेंगी,
1: जी
2: जो हो सकता है इनकी शुगर और थायराइड में डिस्टर्बेंस आए, तो दे शुड ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी वेट,
1: जी
2: तो दैट विल बी गुड फॉर हर।
1: डॉक्टर साहब, प्रवीण हजारिका हमें गुवाहाटी असम से लिख रहे हैं कि ये इनका वेट 80 kg है, इनकी हाइट है 5 feet 10 inches, और ये रोज सुबह मॉर्निंग में 40 मिनट्स वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या करें?
2: हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया अपना हाइट एंड वेट, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है अराउंड 72-75 वेट इनका होना चाहिए। तो इनको 3 to 4-5 kg का मैनेज करना है। देन
1: जी
2: डेफिनेटली फर्स्ट थिंग, जैसे हम सभी पेशेंट को बोलते हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड देन लेटर ऑन हम फिर कुछ मेडिकेशन की बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या किया जाए। बट
1: जी
2: फॉर हिम, बिकॉज अभी इनको 5-6 kg वेट रिड्यूस करना है, ही शुड जस्ट वर्क अप अबाउट द कैलोरीज जो ये ले रहे हैं।
1: जी
2: कभी कभार जंक कैलोरीज हम लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करते हैं, बट इन बिटवीन कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको हम कभी कैलकुलेट या करते ही नहीं अपने रूटीन में।
1: जी
2: तो ये सब चीजें हटाएं, और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है 6 meals a day, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज रिक्वायर्ड। आप 8-8:30 ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करिए, अराउंड 11 o'clock फ्रूट्स, 1-1:30 लंच, 4 o'clock माइल्ड फ्रूट भी ले सकते हैं, 6 tea and 8:30 डिनर। इफ यू टेक ऑल दिस तो इश्यूज नॉर्मल नहीं आते हैं।
1: जी हमारे साथ एक कॉलर है कॉल लाइन पे, डॉक्टर साहब अनिल हमें गुरुग्राम से लिख रहे हैं कि इनके पेट के ऊपर काफी फैट है, उसे ये कैसे कम करें, उसके बाद हम अपना कॉलर लेते हैं। जी
2: देखिए, कोई भी फैट का लोकेशन हमारे वेट रिडक्शन के उस पर नहीं डिस्टर्ब करता है। जब भी हम फैट रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल ही फैट रिड्यूस होता है, बट कुछ चीजें जैसे पेट के ऊपर का फैट, जैसे हमने बताया विसरल फैट या ये जो प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कोर एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसी चीजें करें जैसे कि रनिंग कर सकते हैं, इवन कई तरह के ऐसे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, देन इट विल रिड्यूस इट। बट केवल ये करके नहीं होगा, डाइट के साथ ओवरऑल एक्सरसाइजेस भी करनी।
1: डॉक्टर निमी, आप कुछ कह रहे
0: मैं ये कह रही थी पूजा कि माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है पानी के अलावा जिसमें कैलोरी ना हो। अगर आप 2 चम्मच नमकीन आपने खा ली और आपको ये कॉग्निसेंस ही नहीं है कि मेरे अंदर 80 कैलोरी चली गई, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं। कुछ भी खाए माइंडफुल होके खाए, चाहे आपको लोग ये कहे बड़े ऑब्सेसिव हो गए हो, बहुत ध्यान रख रहे हो, कुछ भी ताना दे, लेकिन शरीर तो आप ही का है ना, बहुत आप ही के अंदर जा रहा है, तो प्लीज बी माइंडफुल।
1: हाँ जरूरी है बहुत वो हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि तनाव और हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं वो मोटापे का कारण होते हैं, क्या कहेंगे आप?
2: जैसे कि मैंने शुरू में

0: कहा था
1: जी
0: कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि अगर स्ट्रेस किसी को है तो हमारे हॉर्मोन्स का डायरेक्शंस एंड लेवल्स रेशियो सब चेंज हो जाते हैं.
1: जी
0: बिकॉज वो स्ट्रेस आपका इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो
1: जी
0: सकता है, लाइफस्टाइल चेंज ओवर ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है. कुछ लोग स्ट्रेस को ये समझते हैं कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो स्ट्रेस है,
1: जी
0: बट कई बार डिसीज भी एक स्ट्रेस है. कई बार आपका जैसे मैंने बताया खाने पीने का टाइम नहीं है बॉडी को, वो भी स्ट्रेस लगता है.
1: जी
0: तो जब भी ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं.
1: जी
0: हार्मोन डिस्टर्ब का मतलब कि जो हम लोगों का वेट या जिसे कहते हैं कि फैट सेल्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके इंसुलिन को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके ओवरऑल डे टू डे लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो या तो उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं.
1: जी
0: तो जिस वजह से हमारा वेट गेन होता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते
1: जी
0: हैं. तो दिस इज द मेजर रीजन दैट वी शुड फोकस मोर ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट एट द सेम टाइम इक्वली. मे बी आई शुड से कि अगर मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं ओबिसिटी को लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि 25% टाइम हम थोड़ा स्ट्रेस रिडक्शन में भी उसके
1: जी
0: साथ
1: जी
0: बात करें.
1: एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पे. हेलो,
2: नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मेरे दो सवाल हैं सर
1: जी
2: से और मैम से
1: जी.
2: कि एक तो कि वेट लूज करने के लिए क्या जिम ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि जिम आप कर रहे हैं उसके बाद जिम करना छोड़ देते हैं तो वेट दोबारा से आप वेट गेन दोबारा से कर लेते हैं. और दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम जैसे वीडियोस में या रील्स में या कहीं पढ़ते भी हैं कि एक इंसान ने एक महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक महीने में थ्रू डाइट या एक्सरसाइज 10 किलो वजन कम किया जा सकता है, या फिर महीने में कितना वजन हम कम कर सकते हैं जो बॉडी के लिए सही रहता है? यही दो क्वेश्चन है
3: मेरे. जी जी. सो देर इज नो एक्सप्रेस सोल्यूशन टू वेट लॉस. बहुत ज्यादा क्रैश डाइट और बहुत ज्यादा जल्दी वेट जो गिरता है वो हेल्दी नहीं होता है
1: जी.
3: मेरे ख्याल से 3 से 3.5 किलो मैक्सिमम.
0: या या या आई विल से लाइक दैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. क्योंकि इवन इफ अगर हम लोग ओबेसिटी मेडिकेशन या जब भी वेट मैनेजमेंट करते हैं तो ये फर्स्ट रूल है कि हमें वेट लॉस बहुत फास्ट नहीं करना
1: जी.
0: है. अगर हम वेट लॉस बहुत फास्ट करते हैं तो कई कॉम्प्लिकेशन लाइक कोलेसिस्टाइटिस और इवन बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं
1: जी.
0: तो इसको हमें बिल्कुल सेफ हेल्दी वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट में जैसे मैडम ने बताया 3 to 4 kg हम नॉर्मली सोचते हैं, मैक्स आप 5 kg जाना चाहिए. जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है क्या एक मंथ में इतना हो सकता है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि द पर्सन इज डूइंग कितना वो डाइटिंग कर रहे हैं. कई लोग यू कहते हैं नॉन मेडिकल डाइटिंग भी करते हैं, जितना उनको नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा करते हैं, या फिर ओवर एक्सेसिव जिमिंग करते हैं जिसमें कि वो अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मसल्स पे ध्यान नहीं रखते हैं. तो इनिशियली शुरू में वो वेट लॉस कर सकते हैं बट लॉन्ग रन में वो मेंटेन नहीं कर पाता, इवन वो फैटीग ज्यादा फील करते हैं.
1: डॉक्टर साहब, जैसे पूछा गया अभी जो कॉलर थे उन्होंने पूछा कि जिम करते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो वेट बढ़ जाता है, क्या ये सही है या एक मिथ है?
3: देखिए, जिम के बारे में मेरे बहुत एक्सट्रीम व्यूज हैं तो आपने ये गलत टॉपिक छेड़ दिया. मैं तो ये कहूंगी कि देखिए वेट लॉस करना और वेट मेंटेन करना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, और ये जो जिम फिनोमिनन है ना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है. आप अपनी दिनचर्या में जितने कदम चलती हैं या आप अपनी दिनचर्या में कितनी स्ट्रेचिंग कितना वेट बेयरिंग या अपनी ही बॉडी का वेट बेयर करके जो घर में करने वाली एक्सरसाइज है वो करती हैं वही काफी रहता है. अगर आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करके अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें, जिम जाना फेजिक होता है, ठीक है चले गए टोन्ड अप हो गए, उसके बाद आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा. हर टाइम आप जिम में नहीं बैठे रहेंगे और महिलाओं के लिए ट्रस्ट मी जिम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है. सो प्लीज कंसिडर इट अ साइड ऑप्शन, बट घर में आप अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान.
1: जी जी. डॉक्टर अमित, मेरे आपसे सवाल है, आपकी लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो वो कौन सी गलतियां हैं जो शरीर में वसा के जमाव और मोटापे की वजह बनती है और इससे बचाव क्या है और लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी में?
0: यस जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
1: जी जी.
0: ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग कुछ जाने अनजाने में चीजें ऐसे करते हैं जिसे हमें नहीं लगता कि उससे जो है हमारे वेट पे असर पड़ता है, बट वो असर पड़ता है. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपका स्लीप कितना टाइम. अगर आपका स्लीप ड्यूरेशन बहुत कम है, नॉर्मली हम चाहते हैं कि 7 to 8 hours होना चाहिए बट एटलीस्ट 7 टच करना चाहिए.
1: जी.
0: अगर आपका स्लीप कम है डेफिनेटली आपके स्ट्रेस फेज बढ़ता है। सेकेंड फेज होता है आपका ईटिंग टाइम कब शुरू होता है। अगर आप बहुत लेट खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। लाइक आई सेड अर्लियर, ट्राई टू टेक ब्रेकफास्ट।

0: earliest as possible. If you see our villagers also, they used to eat very early in the morning. This is a very good reason कि वो relatively healthy और happy रहते हैं. डाइट को बहुत एक साथ accumulate ना करें. जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. इससे बॉडी को मैनेज करने में बहुत ईजी रहता है. एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जहां तक आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, आजकल हमारे पास जैसे कि पहले हम डाइट एंड एक्सरसाइज तो सभी लोगों को पता ही है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट रिडक्शन बहुत जरूरी होता है. उसके लिए हमारे पास एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस हैं, जिसको हम जीएलपी या जीआईपी बेस्ड थेरेपीज बोलते हैं. और इसके लिए हम हरेक को नहीं दे सकते हैं, बट उसके लिए हम उसको एलिजिबिलिटी उसकी वर्कआउट करते हैं, वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर दैट थेरेपी और नॉट. बट अगर आप उस थेरेपी को देते हैं तो वेट लॉस होता है. इट शुड बी वेरी गाइडेड एंड मेडिकेटेड प्रॉपरली, एंड वी कैन रिड्यूस इवन वेट लॉस ऑफ 20-25% ओवर ए स्पैन ऑफ 6 months टू ईयर ऑल्सो. तो जिस पेशेंट को इतनी रिक्वायरमेंट है 10-20%, वैसे इन जनरल अगर आप 10-15% वेट लॉस करें तो इवन प्री डायबिटीज नॉर्मल हो सकता है, और जो डायबिटीज है उनकी मेडिसिन भी हाफ हो जाती है. तो एवरीवन शुड फोकस ऑन 10-15% वेट लॉस एंड विच कैन बी डन. ये इंजेक्शन, जिसके बारे में दो बस पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस इंजेक्शन को वंस ए वीक लिया जाता है. ये इंजेक्शन बेस्ड होता है, ऑल्दो ओरल थेरेपी भी है, बट नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये अभी अप्रूव नहीं है. नॉन डायबिटिक पेशेंट इंजेक्शन ले सकते हैं वंस ए वीक, देर वो ग्रेजुअली दिया जाता है. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम नॉजिया वॉमिटिंग होती है, वी कैन मैनेज विद दैट पार्ट ऑल्सो, बट ग्रेजुअली विद प्रॉपर अपडोजिंग ऑफ दिस मेडिकेशन वेट लॉस को भी अचीव किया जा सकता है. और इसको विद द टाइम पेशेंट ऑल्सो मैनेज करते हैं. लेट सपोज 80 kg पर्सन मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, लेकिन जब वो 5 kg, 3-4-5 kg रिड्यूस करता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ही कैन मेंटेन द वेट लॉस फॉर लॉन्गर टाइम.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल भी.
0: यस यस.
2: हेलो.
1: हेलो.
2: हाँ, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी जी.
2: पहले सबको नमस्कार.
1: जी
0: जी.
2: अच्छा, मेरा दो तीन सवाल है मैडम. एक तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी है, मतलब इट इज सच दैट कि 1 gram per kg बॉडी वेट लेना चाहिए आपको. आदमी मोटा है और उसकी लाइफस्टाइल भी मतलब ऐसी है, तो क्या उसकी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होगी पर मतलब 1 gram per kg बॉडी वेट. और दूसरा सवाल ये है कि मैडम ये जो BMI हम लोग ओबेसिटी को मेजरमेंट के लिए लेते हैं
1: जी,
2: तो उसमें वो कहाँ तक रेलेवेंट है? जैसे अभी किसी का BMI ज्यादा है, देखिए मतलब 25 से ज्यादा है, 30 है, लेकिन उसका मसल मास ज्यादा है और फैट मास कम है, तो क्या वो भी ओबीस माना जाएगा?
1: जी,
2: और एक छोटा सा मैडम तीसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बोला जाता है कि डिनर आप अवॉइड कीजिए या शाम को सनसेट से पहले खा लीजिए, तो ये क्या हर के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब वेट लूज करने के लिए? थैंक यू.
3: इसमें से एक सवाल का जवाब तो मैं दे देती हूँ सर, कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग अवस्थाओं में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है. अगर आपके यहाँ बढ़ता हुआ बच्चा है जिसका विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, और लड़की या लड़का है, तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा. अगर आपके यहाँ गर्भावस्था किसी महिला को है तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा. अगर कोई वियर एंड टीयर हुआ है, कोई किसी बड़ी बीमारी से गुजरा है, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा. बाकी टाइम पे 1 gram per kg बॉडी वेट ठीक मेजर आपने बताया.
1: जी, जी,
0: जी. जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि BMI रिलेटेड पार्ट के, बिल्कुल सही है. आजकल BMI अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो BMI के नियर बाय 20-25-7 हम लोग वेस्ट हिप रेशियो भी लेते हैं. इन दैट सिनेरियो भी हमने ये देखा गया है कि जो पेशेंट उतना नहीं लगता है जिसका BMI, जैसे इनका मसल मास ज्यादा है, तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट से जैसे डेक्सा स्कैन से या इवन कुछ स्पेशल अलग टेस्ट भी आते हैं जिसे हम फैट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, एंड विद दैट वे वी कैन स्टार्ट अवर ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस.
1: डॉक्टर निमी, बात अगर हम जेनेटिक्स के करें यानी अनुवांशिक कारणों की, तो क्या ये जरूरी है कि अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में मोटापे की संभावना बढ़ जाती है? और कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे अधिक वजन के साथ पैदा होते, तो क्या ऐसे बच्चे आगे चलकर ओबेस हो सकते हैं?
3: हाँ और ना, दोनों ही.
1: देखिए,
3: अनुवांशिक फैक्टर्स तो होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ फैट डिस्ट्रीब्यूशन की जेनेटिक्स होती है, वो आती है बच्चों में, तो उनकी फैट पॉकेट्स एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं या एक्सेस होती हैं, लेकिन ज्यादातर फर्क जो है एनवायरमेंट से होता है, बिकॉज उनके परिवारों में फिर उसी तरह के गरिष्ठ खाने खाए जाते रहे होंगे, कोई ना कोई फैक्टर जरूर कॉन्ट्रीब्यूटरी रहा होगा. तो अगर आपके फैमिली में अनुवांशिक ओबेसिटी है तो भी आप उसे जान के उसको

0: एशियटी जो होती है, जो संतुष्टि होती है, वो आप अपनी तरह से, जैसे एक कटोरी दाल ले ली, आराम से बैठ के खाई, आपको लगा जैसे आपने पूरा खाना खा लिया,
1: जी
0: तो उस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो तो
1: जरूरत है
0: इंसान अपने लिए ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं बता सकता
1: जी जी
0: उसको।
1: एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं कॉल इनका भी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी। धर्मवीर
1: नमस्कार
2: गांधीनगर दिल्ली से बोल रहे हैं।
1: जी।
2: डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर, एक हमारे परिचित हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो हफ्ता 10 दिन उनको लिक्विड दिया गया, वो नाक के थ्रू, तो उनका वेट काफी कम हो गया था, उनकी पैंटे लूज हो गई थी, तो ये क्या एक ट्रीटमेंट के कारण ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने लिक्विड ही लिया 10-12 दिन, तो इसी कारण से हुआ? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज होने वाले को क्या हार्मोन्स में चेंजिंग होते हैं कुछ, ये जैसे कि कुछ उनको शारीरिक चेंजिंग आते हैं, इसके लिए
1: जी
2: मोटा मोटा आदमी या पतला आदमी दोनों को ही ऐसे होते हैं, इसमें
3: मैं आपकी
2: हार्मोन्स के
3: बात
2: बारे में भी
3: हाँ
2: पता
1: जी
3: चला
1: जी
3: जाए।
1: जी जी डॉक्टर
3: देखिए,
1: साहब, आपने हार्मोन चेंज के बारे में तो बता ही दिया
3: बता ही
1: है,
3: दिया है।
1: बिल्कुल
3: लिक्विड वाली बात को लेके ये है कि वो नॉर्मली आपकी जिस कंडीशन
1: जी
3: की वजह से ऑपरेशन हुआ है, उस समय कुछ समय लिक्विड देते हैं, तो कैलोरीज को बहुत हाई नहीं रखते हैं, तो दिस इज नॉर्मल ऑल्सो कि फॉर
1: जी
3: सम टाइम आफ्टर सर्जरी पेशेंट में लूज वेट, बट वो ग्रेजुअली वो अपने आप पिकअप कर लेता है कैच अप वेट।
1: जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, और क्या है उपाय इससे
0: देखिए,
1: बचने के?
0: स्ट्रेस इटसेल्फ इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द हार्मनी ऑफ द हॉर्मोन्स। इसके अलावा ऑफ कोर्स वो कम मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो एक्सरसाइज करने में, मूविंग मूवमेंट करने में कम मोटिवेटेड होते हैं, प्लस एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हमने देखा है वेट गेन होता है,
1: जी
0: तो ये मल्टीफैक्टोरियल ही है। नींद नहीं आती है लोगों को तो वजन बढ़ जाता है,
1: हाँ
0: तो सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी इस हिसाब से हैं। तो ओबेसिटी जो है मल्टी स्पेशलिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे साइकाट्रिस्ट का भी रोल आता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का आता है, बिरियाट्रिक सर्जन का आता है,
1: जी जी जी
0: सभी इसमें इन्वॉल्व है।
1: डॉक्टर साहब, नींद की कमी या नींद से जुड़ी परेशानियां भी मोटापे का कारण होती है, क्या है बचाव के उपाय?
3: बचाव आपका उपाय नींद ही है।
1: जी, मगर कई बार नींद नहीं आती।
3: कोशिश ये करनी
1: जी
3: चाहिए कि अगर आप 7 डेज में एटलीस्ट 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज आपकी स्लीप प्रॉपर हो,
1: जी
3: और उसको आप स्लीप मेकअप करना जरूर चाहिए, बिकॉज
1: जी
3: ये इस पार्ट ऑफ स्ट्रेस, लाइक
1: जी
3: आई सेड, कुछ लोग स्ट्रेस दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, तो स्लीप एक्चुअली गिव्स यू इनविजिबल स्ट्रेस इन योर बॉडी।
1: जी डॉक्टर निमी, हमने महिलाओं की तो बात की, लेकिन अब पुरुषों की बात कर लेते कि हार्मोन्स का बदलाव पुरुषों को कैसे ओबेसिटी का शिकार बनाता है?
0: पुरुषों में अलग तरह के हार्मोन्स
1: जी
0: होते हैं, कुछ तो जनरल हैं जैसे थायराइड है, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो तो सबके जनरल ही हैं,
1: जी जी जी
0: लेकिन पुरुषों में यकीन मानिए फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी कम देखने को मिलती है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, लेकिन हाँ अगर उनकी दिनचर्या बिल्कुल ही अनहेल्दी है तो फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी कहाँ, वो जाके फिर कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। और मैंने देखा है अल्कोहल इनटेक ऑल्सो इंक्रीजेस ओबेसिटी को बढ़ाती है,
1: जी
0: तो सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ध्यान में रखने चाहिए।
1: जी
0: ओबेसिटी से आप सिर्फ ऑब्सेसिव लेवल पर लड़ सकते हो, सिर्फ लाइटली आप सोचो हाँ ठीक है वजन है कट जाएगा नहीं क्या करना है, वो नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको इतना हम डरा दें कि आप अगले दिन से अपने वजन पर चेक चेक
1: जी
0: रखना शुरू कर दें, लेकिन
1: जी
0: डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू गाइड
1: अगर
0: यू।
1: हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बहुत इजीली हम
0: जी
1: कर सकते हैं
0: जी
1: कंट्रोल वेट। डॉक्टर साहब,
3: एक बात मैं कहना चाहूंगा
1: जी
3: कि जब भी आप वेट लॉस के लिए प्लान करें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मत प्लान करिए।
1: जी
3: आप ये सोच के चलिए
1: लॉन्ग
3: कि
1: रन
3: 6 मंथ्स टू 1 ईयर मेरी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी।
1: जी
3: वो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप 1 kg to 1.5 kg पर मंथ रिड्यूस कर पा रहे हैं तो यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक ए विनर फॉर द फर्स्ट मंथ,
1: जी
3: गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड एंड देन मूव फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे अगर आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आप 1 kg भी रिड्यूस करते हैं तो इन ए ईयर यू विल रिड्यूस 12 kg, विच इज रियली वेरी रिमार्केबल। और अब हम 2 सालों बीत जाते हैं और एक एक दो दो किलो भी नहीं कम होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, ये जो चीट डाइट होती है ना वो कितनी खतरनाक होती है, कई बार मैं भी करती हूँ।
3: चीट डाइट के बिना तो कोई भी इंसान रह नहीं सकता है, बट यस वंस यू डू दिस एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे यू डू अ गुड एनफ एक्सरसाइजेस टू न्यूट्रलाइज योर कैलोरीज।
0: 2-3 चीजें हैं, अगर आपके यहाँ यंग बच्चे हैं तो प्लीज प्लीज उनको स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज कीजिए, शुरुआत से ही माँ बाप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रेरित करते हैं। दूसरी बात, अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज कीप अ वेइंग बैलेंस। हर रोज आप अपना वजन लीजिए, हर दूसरे दिन लीजिए, लेकिन जहां आधा किलो एक किलो बढ़ा

0: प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स. और तीसरी बात, प्लीज 1 घंटा या 45 मिनट से ज्यादा बैठे मत रहिए.
1: जी
0: सिटिंग इज अगेन अनदर पॉइजन दैट वी हैव इन आवर लाइफ.
1: जी डॉक्टर साहब, क्या ओबेसिटी से कैंसर होने का भी चांस रहता है?
2: यस यस, ओबेसिटी में कई सारे कैंसर्स होने के चांसेस हैं. और इवन वी हैव सीन दैट वेरियस कैंसर्स, इवन चाहे वो ब्रेस्ट हो, कोलोन हो, प्रोस्टेट हो, ये कैंसर्स भी देखे गए. बट डेफिनेटली जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनके वेट गेन होने के बाद ऐसा होता है, दैट टू वेरी हाई ओबेसिटी, नॉट इन जनरल ओबेसिटी.
1: जी जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम रह गया है, तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से तरीके हैं और आदतें हैं जो ओबेसिटी को दूर रखती हैं. स्वास्थ्य से जुड़े डूज एंड डोंट्स क्या है?
0: आई वुड ऑन अ लाइट वेन से कि विटामिन एम एंड विटामिन डी, विटामिन एम एंड विटामिन पी आपने नहीं सुना होगा, ए बी सी डी सुना होगा. एम इज मूवमेंट एंड पी इज प्रोटीन.
1: जी
0: राइट, इन चीजों पे ध्यान दीजिए और ऑब्सेसिव लेवल पे दीजिए, शुरुआत से दीजिए, लोगों को प्रेरित करिए. और अगर वजन बढ़ भी गया है तो एक बार अगर आप घटा लेते हैं उसको मेंटेन करिए.
1: जी जी डॉक्टर,
2: मैं बस लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि दो चीजें आप, तीन चार चीजें खुद भी कर सकते हैं.
1: हाँ जी.
2: एक तो स्टेप्स लेवल पे भी आप मैनेज कर सकते हो. अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 steps कवर अप करने की कोशिश करिए थ्रू आउट द डे. वो आप इवन ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो इवन यू कैन वॉक हेयर एंड आउट, उसमें बैठे बैठे ना रहे. टाइमली आप फूड जरूर खा लीजिए. अगर टाइमली नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स अदर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. और एक स्लीप पैटर्न, और कोशिश करिए अगर डेली 1 आवर आप वॉक कर पाते हैं टू सम आउट, नॉट स्पेशली इन द मॉर्निंग, एनी टाइम इन द इवनिंग ऑल्सो, देन आई थिंक यू कैन मैनेज योर
1: सेल्फ. यूथ की बात करें तो आजकल कई यंगस्टर्स में भी ओबेसिटी हो जाती है, इसका क्या कारण है और निदान क्या है?
0: तो मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइम इटसेल्फ इज समथिंग कि भाई बैठे ही तो हैं, तभी तो बैठ के स्क्रीन कर रहे हैं. तो अगर आप बैठे रहेंगे तो आप, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अन ईजी टारगेट फॉर ओबेसिटी टू स्ट्राइक. तो प्लीज हर 15 मिनट में उठ के वॉशरूम जाइए, वापस आइए अपने ही रूम में, अपने ही क्यूबिकल में घूमिए, छत पे जाइए, अपने आंगन में चलिए. अगर आप नहीं कहीं जा रहे हैं, प्लीज कीप ट्रैक ऑफ योर steps.
2: I also feel that these youngsters, which I feel in OPD also, they usually in a habit of awakening late night. So usually they wake up in the 2 a.m., 3 a.m. and they have the intermittent munching also in the meantime. So late night awakening ko aapko rokna padega, क्योंकि ये रोकेंगे तभी अर्ली मॉर्निंग वाले सारे इश्यूज शुरू हो पाएंगे.
0: और पूजा, ये बात सच है कि रात का खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पचता है, वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप रात को खाते हैं और
1: लेट नाइट
0: सो जाते हैं.
1: जी जी,
2: मेंटली ऑल्सो इट डिस्टर्ब्स योर होल सिनेरियोस.
1: तो डॉक्टर अमित चाबरा जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों ने आज हमें डीलिंग विद ओबेसिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और श्रोताओं, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
0: थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू एवरीवन.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

शाम के 4 बज गए हैं। पेश है फिल्म रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ है। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं।

0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे मुख्य समाचार। आगे है हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के, मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सब सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस तो आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहां से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का
0: हरियाणा।
1: तो बस हमारे यहाँ काफी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जोली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप

0: सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीजें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से करीब 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: हाँ जी,
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने।
1: हाँ जी,
0: और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो जब हमारी कमिशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने
0: हम भी जाएंगे। अच्छा,
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
0: ओके,
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था। अच्छा, कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा,
1: तो ये हम अपना ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से लड़ाई का हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
0: बिल्कुल,
1: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
0: अच्छा, और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे। मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 और सीनियर्स थे, काफियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
0: जी जी,
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे। और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे।
0: अच्छा,
1: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की।
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे।
0: Okay.
1: मतलब आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
0: जी,
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे हमारे सीनियर्स थे।
0: अच्छा,
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
0: जी,
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली, बहुत
0: एथिकली और साथ ही साथ
1: वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे, हम कहते हैं हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
0: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और

0: किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी जो
0: अच्छा
1: गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं,
0: जी
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में,
0: ओके
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में
0: बिल्कुल
1: तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल
0: अच्छा।
1: में, और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे
0: अच्छा।
1: सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा एक
1: हाँ
0: पूरा
1: जी
0: ऑपरेशन रहा होगा,
1: हाँ
0: तो
1: जी।
0: सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है, आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं,
0: जी
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: इस
0: ड्यूटी।
1: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं
0: जी
1: 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ, किस सेकंड आपको जंगल में कहां टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले
0: अच्छा
1: देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा। बहुत इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि
0: और
1: इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके, या फिर
1: या शहीद हो,
0: शहीद होकर।
1: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और सैक्रिफाइस। या सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सैक्रिफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं,
0: अच्छा,
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए।
1: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
1: यही एक कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप है
0: जी।
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
0: क्या बात है सर,
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
0: क्या बात है
1: वो,
0: क्या बात।
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में, इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहां पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल होता,
0: नहीं हो सकता। सर वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
1: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, वही हम NDA जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज, 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
0: बिल्कुल सर, सोशल

0: या
1: मूवी
0: पूरा
1: हीरो।
0: पूरा एकदम?
1: यू नो हमारे आसपास क्या होता था, हम जहां ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ आप
0: वो सही
1: ऐसे,
0: मोटिवेटेड
1: हाँ
0: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
1: या
0: रहे हैं।
1: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बना हूं और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
0: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
1: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
0: विदाउट अ डाउट।
1: ये
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
0: सर, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
1: हाँ जी,
0: आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
0: तो
1: होती है और टाइम ऐसा
0: और
1: होता
0: टाइम
1: है।
0: ऐसा होता है।
1: हाँ
0: तो हम अपने लिसनर्स को यहां बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जौली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूं। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं। सर आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारे भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी, पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, हाय अमर जय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है, सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
1: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
0: जी
1: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
0: अच्छा
1: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है वो आपको शेयर, दैट इज
0: ठीक
1: उसको कोई
0: ठीक
1: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
0: जी
1: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
0: जी
1: इंटरव्यू की
0: जो आप
1: तैयारी
0: हैं,
1: जो आप हैं।
0: क्या बात
1: अगर
0: है।
1: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
0: अच्छा
1: बोलिए
0: अच्छा
1: मुझे
0: अच्छा
1: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
0: जी
1: बुक्स पढ़ी है पकड़ लेगा आपको, ठीक है।
0: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं
1: बिल्कुल
0: वहां पर।
1: बिल्कुल
0: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
1: आपको
0: संदेश
1: भी जय हिंद।
0: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
0: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
1: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप
0: अच्छा
1: बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
0: जी,
1: जहां पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट,
0: बिल्कुल
1: आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा
0: बिल्कुल
1: फिजिकली, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था लेकिन
0: अच्छा
1: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
0: जी
1: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या
1: है,
0: आपने,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
1: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म
0: जी
1: करने में, बट ये है कि शुरू में जाके क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं उनको
0: जी
1: थोड़ी आदत होती है,
0: ओके
1: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती, क्योंकि चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
0: बिल्कुल जाहिर है प्यार से, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, सिक्स टर्म में थे वो, तो क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो।
0: अच्छा,
1: तो मैं आपको बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है। मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका। कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए
0: जी,
1: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का। मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
0: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन,
1: हाँ जी,
0: और अजय देवगन जी।
1: तो उस थोड़े महीनों के लिए अकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे।
0: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था?
1: आई थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से।
0: अच्छा,
1: तो उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीने तो चला था फॉर श्योर
0: जी।
1: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे।
0: ओके।
1: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई,
0: ठीक है,
1: और उनसे परेड वेरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू, हम तो मुंबई से आया है शूटिंग वाला है तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों।
0: अच्छा,
1: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया। और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया।
0: अच्छा,
1: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे।
0: ओके, हीरो मतलब हीरो बन जाएंगे। ठीक है,
1: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ जाएगा। वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे।
0: अच्छा,
1: कोई ना कोई तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी। तो
0: अच्छा,
1: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे देख रहा हूँ इधर उधर।
0: अच्छा, हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के लिए।
1: हाँ जी प्लीज। तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
0: हाँ, गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर, सोनाली बेंद्रे।
1: बिल्कुल।
0: तो सर वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में?
1: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं, आई थिंक।
0: अच्छा।
1: हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री, ये सब होते थे, लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
0: अच्छा,
1: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
0: जी जी जी,
1: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस,
0: ऑफ कोर्स।
1: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस, जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे, कितने अच्छे से बात करती हैं। तो पूरी एकेडमी बस
0: सारी दीवानी थी,
1: दीवानी थी, कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे।
0: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
1: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है।
0: अच्छा,
1: मूवी में तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है।
0: अच्छा,
1: तो एक घंटे में कई, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रही है, वहां पे पहुंच गए, बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था।
0: अच्छा,
1: ये सब चलता रहता था वहां
0: जी। तो अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था?
1: हाँ जी, वो ड्रिल में, पीटी में कई बार आते थे, बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है,
0: बिल्कुल
1: फिल्मी हीरोज का नहीं होता, तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए।
0: बिल्कुल। हाँ, रीटेक्स के साथ। हाँ, वो सब ठीक से हो जाए।
1: पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था, मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
0: जो आप हैं,
1: जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये मतलब वो एक्टर्स है, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी। सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब, मैंने यहां पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
1: बिल्कुल
0: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिक एमजोली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहे हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, और मैसेज करते रहें।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज का हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े

0: इंटरेस्टिंग किस्सा आपने जो सुनाया, और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहां पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूं, क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे, हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया है इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपेरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद, शो रोचक ज्ञानवर्धक लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज हैं सर। ये बहुत लंबा एक मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सोल्जर्स एंड आल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश All Indians happy 80th Independence Day, भारत माता की जाए, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं है, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमा पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहां पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहां पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहां से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके,
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: और वहां पर आप की पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी,

0: तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे,
1: जी
0: उसका स्केल समझ नहीं पाता कि किस
1: जाहिर है,
0: स्केल पे हम बात कर रहे हैं, कि वो जंगल कितना बड़ा था।
1: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच
0: या
1: सकता।
0: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है,
1: अच्छा
0: जिस शहर में आप लोग आपके लिसनर रह रहे हैं
1: जी,
0: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
1: अच्छा
0: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट,
1: 20-20 फुट,
0: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है, राइट?
1: अच्छा
0: और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था, ये था, वो कहते हैं हाँ ठीक था, अच्छा था।
1: तो यानी कि वो जो
0: ओनली
1: ठीक था
0: रीजन
1: कह रहे
0: इज
1: हैं वो,
0: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
1: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
0: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
1: जी
0: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
1: अच्छा,
0: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
1: जाहिर है
0: जो
1: जो
0: वेट कर
1: सबसे
0: रहा है,
1: बड़ा
0: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप
1: वो
0: उसको
1: वेट कर
0: पहले
1: रहा
0: दिख
1: है
0: जाए।
1: जी,
0: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
1: एक बार
0: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा
1: ओके
0: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
1: जी
0: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
1: हाँ
0: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
1: ओके okay.
0: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
1: नहीं
0: करेंगे,
1: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
0: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
1: ओके
0: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे हिल रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना चप्पल में जाओ फौज बर्फ में जाके पोस्ट
1: जी
0: बना लो, वो चला जाएगा।
1: अच्छा,
0: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है वो नहीं
1: एक्सक्यूज
0: है,
1: कुछ नहीं।
0: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
1: अच्छा
0: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप वो आपके देशवासी हैं,
1: बेशक
0: आप नहीं
1: उनकी भी
0: चाहते,
1: हिफाजत।
0: हाँ आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को तो परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ
1: थी,
0: कि मैं आपको यही बस कि जो मैं कर रहा हूं इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूं,
1: जी उनको
0: और
1: कद्र
0: उस
1: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी,
0: मतलब
1: हमारा
0: मान
1: भाई
0: लीजिए
1: है,
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और
1: बिल्कुल
0: फौजी
1: फौजी
0: एक तरफ,
1: एक
0: जो
1: तरह
0: प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं, हम हर हफ्ते यहां पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
0: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने
0: तब
1: में तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
1: 10-15 दिन में
0: क्योंकि
1: एक
0: पहाड़ में
1: बार।
0: वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
1: अच्छा
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी
1: मेरी
0: आई
1: भी
0: है,
1: चिट्ठी
0: मेरी भी।
1: आएगी
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी।
0: मजाक नहीं है एक्चुअली,
1: अच्छा
0: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से परिवार से आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहां
1: क्या
0: पे,
1: बात है,
0: हाँ,
1: मतलब लेटर्स की हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस
0: भेज
1: भी
0: देंगे,
1: भेजना है।
0: या
1: ओके
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा,
0: तो आपके पास कुछ कैसेट बाय चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई
1: चली गई।
0: वो नेचुरली या तो आपकी

0: नीचे
1: अच्छा
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं और अपने
1: परिवार को
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते हुए
1: क्या
0: गा रहे
1: बात
0: हैं।
1: है,
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स। जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त।
1: मेजर मानिकम जॉली आज के संदेश के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुस्तम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि okay. मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहां पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज्यादा। काफी ऑपरेशंस किए हमने, काफी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफी पकड़े।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन।
0: okay.
1: वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये
0: okay.
1: ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं।
0: जी, तो सर इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके। उसे वो जमाने की बात है।
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा।
0: जी जी जी।
1: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के, तो हमने समझा कि ये कैसे। तो उससे काफी आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीजें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है।
0: ओके।
1: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पे काफी काम किया।
0: अच्छा।
1: वो आज तक चल रहा है और काफी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल।
1: तो उस टाइम तो नया नया था
0: तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टैब्लिश करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है।
0: जी, तो सर अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी।
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा।
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा।
1: मतलब धीरे धीरे समझ आया
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर, इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोर्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी, तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी। तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा।
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा। तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज
0: है,
1: ये फर्स्ट बुक थी उसकी कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके।
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए, इसको फिक्शन।
1: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी, आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। जाते जाते जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे

0: ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब एनडीए में थे तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
0: बॉर्डर जी बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था,
0: अच्छा
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
0: सर लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिकम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हेड्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम यूएसए न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज किया है।
1: थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू एनडीए और आफ्टर एनडीए, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर एनडीआर एंड आरजे एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर से।
1: वाह, हमारे शहर से आया
0: जी
1: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर। विजय कुमार है ये।
1: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सोदश शाहिद के साथ।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी

ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार विस्फोट के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। चीन और रूस ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन देने की पुष्टि की है। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। और अंत में कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बैन शेल्टन से होगा। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और क्या खूब कहा है कहने वाले ने कि दिल और शहर की तासीर एक सी रहती है, इसे अपना बनाने के लिए इसमें बसना पड़ता है। जी हाँ जनाब, बात जब दिल की हो और शहर याद आ जाए तो यकीन मानिए वो शहर सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, रूह का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, शहर में सिर्फ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और रोशनी नहीं रहती है, बल्कि शहर अपने अंदर हजारों सपने, हजारों कहानियां समेटे हुए रहता है। सुबह की भागदौड़ रहती है शहर के पास, तो रात की खामोशी भी रहती है शहर के पास। हर पल शहर कुछ ना कुछ कहता नजर आता है, और नजरों को घुमाकर अगर हम घड़ी की तरफ लेकर जाएं तो घड़ी कह रही है कि वक्त हुआ है 5:04 और पूरे 25 सेकेंड। टेम्परेचर की भी बात अब कर ली ही जाए। जी हाँ जनाब, तो आज का टेम्परेचर मैक्सिमम रहा 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। और सूर्यास्त की बात की जाए तो सूर्यास्त होगा 7:02 पर। आज के पूरे दिन में इधर उधर नजरें घुमाकर देखा जाए तो बादल छाए रहे कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी का एहसास भी करवाया आज के दिन ने। कहा जाए तो आज का दिन दिल के करीब रहा, दिल के अंदर रहा, दिलवच रहा।

बचे 13 अगस्त और बस एक दिन का इंतजार। जी हाँ, 15 अगस्त को हम सभी सेलिब्रेट करेंगे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। वो एक महान पर्व जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता है। इस दिन हम असंख्य वीरों के बलिदानों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, अपने अतीत से जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना के साथ आगे भविष्य में अपने भारत के लिए बहुत कुछ करने की चाह के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो अपने देश प्रेम, देशभक्ति और खुशियों की भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे जो सशक्त माध्यम हमारे पास रहता है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी पहचान नहीं बल्कि भारत की एकता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। और ये हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम हर साल अगस्त के महीने में राष्ट्रीय पर्व की खुशियों के

हर घर तिरंगा अभियान जी हां मनाते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को आन बान शान के साथ अपने घरों में फहराते हैं। जी हां, इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हो चुकी है 9 अगस्त से। राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो जाइए आप भी। 9 अगस्त से 17 अगस्त अपने घर पर तिरंगा फहराइए। हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो बहुजनिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य के साथ हर पल आपके साथ। बात की जाए भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती के दो अभिन्न अंग हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन। और आकाशवाणी पर इंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन हर पल आपके साथ, कहें तो इंफोटेनमेंट का ब्लेंड आकाशवाणी। और हम तो आपको प्रेरित कर ही रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए। आप अपने घर पर तिरंगा फहराइए और सेल्फी भी लीजिए और उसे अपलोड कीजिए www.hargartiranga.com पर। जी हाँ, कई करोड़ सेल्फीज अपलोड हो चुकी हैं, आप कर चुके हैं या अभी आप का नंबर आने वाला है और आप बस सोच रहे हैं, तो सोचिए मैं जल्दी से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर आप तिरंगा फहराइए, सेल्फी लीजिए और उसको अपलोड कीजिए www.hargartiranga.com पर। और अब एक साथ में एक और बहुत ही खुशखबरी वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहती हूं। जैसे मैंने कहा कि प्रसार भारती का अभिन्न अंग है आकाशवाणी, तो वैसे ही दूसरा अभिन्न अंग है दूरदर्शन। जी हाँ जनाब, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूरदर्शन नेशनल द्वारा एक कैंपेन का आयोजन किया गया है। देशभक्ति के गीतों पर आधारित ये अभियान है, ये कैंपेन है और इसका नाम दिया गया है सिंग फॉर इंडिया। और इसमें करना क्या होगा आपको, जी हाँ, पैट्रियोटिक सॉन्ग की एक लिस्ट दी गई है दूरदर्शन नेशनल के इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पर, वहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट पर। आपको उनमें से एक गीत चुनना है। गीत तो बहुत सारे हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, मेरे देश की धरती, या मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, कई सारे गीत हैं। आपको जो पसंद है आप उस गीत को चुनिए। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको गाने का शौक है और आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो दूरदर्शन नेशनल आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जी हाँ, जल्दी से अपना वीडियो बनाइए। जी हाँ, डीडी नेशनल की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाइए, वहाँ से जो गाने हैं उन्हें चूज़ कीजिए, उसके बाद अपने फ़ोन से वीडियो बनाइए। और जो वीडियो की क्वालिटी होनी चाहिए वो 4K की होनी चाहिए, MP4 फॉर्मेट होना चाहिए और जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आपके वीडियो में जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और फिर आपको करना क्या होगा, इसे कहाँ सबमिट करना होगा, इसे करना होगा आपको सबमिट डीडी नेशनल की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, गूगल ड्राइव सबमिशन लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको अपना ये वीडियो अपलोड करना होगा। और फिर ये कब तक कर सकते हैं आप, तो ये आप 14 तारीख तक यानी कल तक कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। आप अभी क्या कर सकते हैं, जी हाँ, आप अभी कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं और कल इत्मीनान से बिल्कुल शांत मन से वीडियो बनाइए, उसे अपलोड कीजिए दूरदर्शन नेशनल के इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो लिंक दिया गया है वहाँ गूगल ड्राइव सबमिशन लिंक है। कल 14 तारीख लास्ट डेट है। और फिर आप कहाँ छाएंगे, जी हाँ जनाब, आपको जो डीडी नेशनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर आपका वीडियो अगर बेस्ट वीडियो रहा तो वहाँ पर आपके वीडियो को शो किया जाएगा और डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर भी आपके वीडियो को अपलोड किया जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप, जल्दी से कैश कर लीजिए इस मौके को।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: आय हाय,
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अगर आपको भी प्रेम और मोहब्बत है घूमने फिरने से और घूमना फिरना आपका कोई रोग नहीं बल्कि आपकी एक पसंद है तो आपकी पसंद बहुत लाजवाब है जनाब। जी हाँ जनाब, घूमने फिरने से जहाँ मूड फ्रेश हो जाता है तो साथ ही साथ नई चीज़ों को समझने का जानने का मौका भी मिलता है और एक ऐसा ही मौका आपके हाथ में है, भारत मंडपम जाना है आपको। जी हाँ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन हो चुका है। कल यानी 12 तारीख से भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और ये महोत्सव व्यापार महोत्सव चलेगा 15 अगस्त तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कब से कब तक जा सकते हैं आप? जी हाँ, सुबह की बात की जाए तो सुबह का समय 10 बजे रहेगा और ये जो बिजनेस डेलीगेट्स हैं जो बिजनेस के पर्पज से वहां जाना चाहते हैं वो वहां पहुंच सकते हैं 10 बजे से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक। इसके साथ ही आम जन के लिए, आम जनता के लिए, दर्शकों के लिए ये भारतीय व्यापार महोत्सव 3 बजे से खुल जाएगा। आप यहां 3 बजे शिरकत कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, नई चीजें देख सकते हैं, नई चीजें खरीद सकते हैं और 7 बजे लास्ट टाइम रहेगा जब आपको वापस आना होगा, फिर आप जा सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी 2 दिन हैं, 14 और 15 तारीख, तो आप 2 दिन आराम से वहां जाकर बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। जी हाँ, GI टैग के उत्पाद होंगे, हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर उद्योग के तमाम आइटम्स, प्रोडक्ट्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, खरीदने को मिलेंगे। लगभग 700 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें कि भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग जगहों से MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो समूह हैं वो आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम बनाना है, अकेले जाना है या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना है या फिर फैमिली के साथ जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जाना कब कब है? 12 तारीख को शुरू हो चुका है, 13 आज है, कल 14 और 15 अगस्त तक ये रहेगा भारतीय व्यापार महोत्सव और समय रहेगा सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। बिजनेस डेलीगेट्स जा सकते हैं, आम जनता, दर्शक 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं और बहुत कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए खरीद सकते हैं।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सिटी लाइट्स प्रोग्राम, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और हमारे साथ बहुत सारा इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन। जी हाँ जनाब, और अब एक बहुत ही खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। त्रिवेणी कला संगम, जी हाँ, त्रिवेणी कला संगम में अगर आप डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, त्रिवेणी कला संगम की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर कुचिपुड़ी डांस क्लासेस के लिए इनवाइट्स मांगे गए हैं, एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। और ये जो कुचिपुड़ी डांस क्लासेस होंगी वो शुरू होंगी 1 सितंबर 2026 से इन क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस अभी से शुरू हो चुका है, आप त्रिवेणी कला संगम की वेबसाइट पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। एज ग्रुप क्या रहेगा और कितनी फी रहेगी, फैकल्टी कौन रहेगी, कौन है गुरु आपके जो आपको कुचिपुड़ी क्लासेस देंगे, कुचिपुड़ी डांस की क्लासेस देते हुए आपको इस खूबसूरत डांस फॉर्म को सिखाएंगे। आप त्रिवेणी कला संगम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जा सकते हैं, साथ ही आप त्रिवेणी कला संगम की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप हाई लिख के अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और फिर उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। जी हाँ, और व्हाट्सएप नंबर है 9958831338। त्रिवेणी कला संगम का व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, 9958831338। तो सोचना क्या जी, मूड बनाइए और शुरू हो जाइए।

किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छे वक्त पे पंख लगे होते हैं, बिना बताए वो छम से उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही आज भी हुआ है। अब वक्त हो चला है आपसे टाटा बाय बाय करने का, लेकिन उससे पहले आपको एक और इवेंट की जानकारी देते चले जनाब। सावन महोत्सव 2026 चल रहा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है जुलाई के महीने से ही और ये चलेगा 28 अगस्त तक। कहाँ पर होगा ये? दिल्ली में होगा, ठक्कर बप्पा स्मारक सदन में। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो होगा झंडेवालान मेट्रो स्टेशन, और गेट नंबर 4 से आप निकलेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर रोड की तरफ जाते हुए आपको ठक्कर बप्पा स्मारक सदन मिलेगा। यहाँ पर चल रहा है सावन महोत्सव, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है और बहुत कुछ खाने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप बहुत कुछ खरीद भी सकते हैं। और अगर एफएम रेनबो की बात की जाए तो एफएम रेनबो पर भी कई सारे कार्यक्रम हैं जो आपको एंटरटेन करने के लिए बस एक के बाद एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले जाएंगे। तो 7 बजे से पहले 6 बजेंगे जनाब, तो 6 बजे का जो कार्यक्रम रहेगा वो होगा मैसेज मसाला मिक्स, जिसका आप हर दिन इंतज़ार करते हैं और इसे लेकर आएंगी चंद्रानी मुखर्जी। इसी के साथ 7 बजे का प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूज़िक का हिट्स एंड मेमोरीज, लेकर आएंगे रघु। 8 बजे एक बार फिर चंद्रानी मुखर्जी आपके साथ जुड़ेंगी म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम के साथ। रेशमा फारूकी आपके साथ 9 बजे जुड़ेंगी, लेकर आएंगी वो प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और इसके बाद 10 बजे रघु फिर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम के साथ आपके साथ रहेंगे, और म्यूजिक का जो ये प्रोग्राम है वो होगा ऑल दैट जैज। और इसके बाद रेशमा फारूकी एक बार फिर दोबारा से वक्त को थामने के लिए आपकी जिंदगी में आ जाएंगी, क्योंकि वो प्रोग्राम लेकर आएंगी ए महफिल। 11 बजे का समय रहेगा इस प्रोग्राम का, और अब वक्त ये कह रहा है कि मुझे चलना होगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी चंद्रानी मुखर्जी, और प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39.17% ही कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश में खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। मुंबई के साकी नाका इलाके में कल हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। चीन और रूस ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन देने की पुष्टि की है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित 35 पदक जीते। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टर से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो लगातार।

0: आकाशवाणी
1: हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नया एंकर आपके लिए लेकर आता है हर एक शाम में मैसेज मसाला मिक्स। तो आज की शाम भी हम हाजिर है और हर दिन जब हम आते हैं तो दिल में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, उनसे हम बातें पूछेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है इस टॉपिक को लेकर। तो आज के टॉपिक में आपसे हम जानना चाहेंगे, दोस्तों आप सभी इस वक्त घर में होंगे, हो सकते हैं कुछ बाहर हो, लेकिन हम में से सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई घर जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होती है जहां वो रहते हैं, जहां वो अपनी अपना जीवन बिताते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं और अपनों के साथ अपने दिल की बातें करते हैं। लेकिन घर को घर जैसा बनाए रखने के लिए रोज न जाने कितने काम करने पड़ते हैं। जी हाँ, घर जिससे कि हमारा बिल्कुल प्यारा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा लगे, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, किचन की सफाई और भी न जाने सब्जी काटना, लाना, आटा गूंदना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, पानी देना, छत की सफाई और गाड़ी है तो उसकी भी सफाई। और ये तो ऐसे काम है कि जो एक दो दिन नहीं है, रोज ही करने पड़ते हैं आपको। तो आपसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि घर की कौन कौन सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप किन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर पूरा योगदान देते हैं उसे करने में, हमें बताइए 9868107070। चांद है आपके साथ, चांद, सिर्फ चांद, चांद और चांद।

0: दोस्तों असल में ये टॉपिक हमारे दिमाग में ऐसे आया क्योंकि हम यहाँ पे अकेले रहते हैं और हमें इतने काम करने पड़ते तो हमने सोचा अपने दोस्तों से भी पूछे, वो तो अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे, उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और आपने बाप रे बाप इतने सारे काम बताए, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। आपको क्या करना है, आपको लगातार सुनते रहना आकाशवाणी रेनबो सिर्फ चांद के साथ। ब्रेक ये है
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: और दोस्तों मैसेज मसाला मिक्स में आज हमने आपसे जानना चाहा है कि घर के इतने सारे कामों में आपने कौन सी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी है। मैसेज मसाला मिक्स में आपको ये बताना 9868107070 9868107070 ये है वो नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके हमें मैसेज कर सकते हैं। और अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और ये थोड़ी सी चुनचुन की जो आवाज़ आ रही है वो हमने ईयरिंग्स पहन रखे हैं, उनकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंची होगी। फिलहाल पहला मैसेज हमारे पास आया है, कैसी है, हम बहुत अच्छे हैं। और अगला मैसेज जो इन्होंने लिखा है वो मोहम्मद सरफराज आलम जी ने लिखा है, जो कि दशना बाज़ार से अररिया बिहार से लिखते हैं कि मैं घर के कामों में अपनी पत्नी बेगम खालिदा जी का यथासंभव हाथ बटाता हूँ। कभी कभी खाना भी बना लेता हूँ, रोटी भी बना लेता हूँ, क्या बात है, खासकर जब उनकी तबीयत खराब रहती है। मैं शिक्षक हूँ इसलिए संडे की छुट्टी के दिन घर की सफाई में भी हाथ बटाता हूँ। झाड़ू लगाने से लेकर पोछा लगाने तक मेरा मानना है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों की सांझी जिम्मेदारी। क्या बात है। अगर आपने ये सिर्फ मैसेज लिखने के लिए नहीं लिखा है और आप सच में अगर ऐसे ही हैं तो यकीन जानिएगा आपकी बात सुनकर काश कि 2-4 लोग और इंस्पायर्ड हो जाए, 2-4 नहीं कम से कम 90% लोग अगर इंस्पायर्ड हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा इस दुनिया में, है ना। और दीपा बिजनौर से लिखते हैं कि मुझे तो सवेरे 4 बजे उठना पड़ता है, मेरे बच्चे और मेरे पति भी सुबह उठकर बच्चों को लेकर योगा करते हैं और वक्त मिलता है तो दौड़ भी लगाते हैं। जब तक वो वापस आते हैं घर में झाड़ू पोछा करके नहा धोकर पूजा करनी होती है, उसके बाद नाश्ता, फिर सिलसिला हो जाता है शुरू, बच्चे का स्कूल जाने का और पति के काम पर जाने कि फिर उसके बाद इतना कुछ नहीं होता काम करने, हम सारी दौरानी अच्छा हम सारी देवरानी जोरानी बैठ कर हमारी सास भी होती है 1-2 घंटे लेकर, फिर हम सब खाने की तैयारी करते हैं जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं। वाओ, यानी आपकी इतना भरा पूरा परिवार है कि सबका हाथ भी बढ़ जाता है और आप सारे लोग काम भी कर लेते हैं। यही तो मज़ा है दोस्तों, जब सारे लोग साथ होते हैं ना काम बढ़ जाता है। बस हम यही जानना चाहते हैं अगर आपके बहुत सारे फैमिली में लोग हैं तो कौन कौन से काम है जो आपकी जिम्मेदारी में है और आप उन्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहते हैं। और अगर आप अकेले रहते हैं तो भी आप क्या क्या काम करते हैं वो भी बता सकते हैं। अगला मैसेज हमारे पास लिखते हैं, किन्होंने लिखा है नाम देखिए आगे आएगा, अभी तो हम पढ़ते हैं। सोनू बिजनौर से लिखते हैं कि घर में 2-3 घंटे बहुत कम होते हैं, सुबह में एक्सरसाइज करने उसके बाद नाइट होते पूजा करनी, नाश्ता करके हम तो अपने लिए चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमें पता नहीं होता घर में कितना काम होता है, सिर्फ हमें ये पता है कि हमें अपना आज कौन सा काम करना है। सोनू बिजनौर से ऐसा लिखते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं घर में लेकिन आप करते तो होंगे कुछ ना कुछ, तो करते होंगे ज़रूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर का आप कुछ ना कुछ, क्योंकि फैमिली में जब रहते हैं ना हम लोग तो ऐसा आप नहीं, इससे छुटकारा नहीं पा सकते कि आप ऑफिस में काम करते हो तो आप कुछ और काम करोगे ही नहीं, क्योंकि ये करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगला मैसेज हमारे पास कविता जी का आया देवभूमि उत्तराखंड से, लिखते कि अभी लाख तक पेड़ लगाने की योजना, अच्छी बात है, ये है कि देखभाल नहीं की जाती। अभी मैं स्कूल में हूँ और स्कूल के पास बड़ा सा पेड़ गिरा, उससे नुकसान पहुंच सकता है, सड़क के तीनों तरफ पेड़ है लेकिन जड़ों पर मिट्टी नहीं होती। ये आपने जो मैसेज किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने आज जो जानना चाहा है उसके अगर उसके बदले में अगर आप मैसेज करते हैं उससे रिलेटेड तो हमें और अच्छा लगता है। कविता जी आपने मैसेज किया उसके लिए शुक्रिया। मोनीश इद्रीस रामपुर बिलासपुर से लिखते हैं, वैसे तो घर के काम सारे काम हम दोनों करते हैं, मेरी बीवी और मैं, लेकिन एक काम ध्यान से करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना मुझको ही है। वही आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि कौन से ऐसे काम है जो आप करते हैं घर की जिम्मेदारियों में अपना साथ देने के लिए। चांद है आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में, आज हमने आपसे यही जानना चाहा है कि घर के इतने सारे कामों में आपके जिम्मे कौन से काम है। और बताने के लिए जो नंबर है वो है 9868107070। दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, जाले झाड़ना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, बाप रे बाप, सब्जी लाना, आटा गूंदना,

0: दोस्तों आपके इतने मैसेजेस की ढेर बता रहे हैं कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए, बस आपको करना ये कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे और उसके बाद आपके मैसेजेस लेके आएंगे। तो आप सुन रही आकाशवाणी रेडियो मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि घर की जिम्मेदारियों में कौन सी जिम्मेदारी आपके हिस्से आती है जो आप भली भांति निभाते हैं।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज हम आपसे क्या जानना चाहते हैं, जिस घर में प्यारे से घर में स्वीट स्वीट होम

में आप रहते हैं उनमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है जिन्हें आप निभाना चाहते हैं। मैसेज हमारे पास आया है निधि जी का फ्रॉम पंचकुला से, लिखते हैं कि आरजे आपकी आवाज और बात करने का अंदाज हमेशा की तरह प्यारा और दिल को छू लेने वाला है। एक श्रोता के तौर पर मैं भी बताना चाहूंगी कि घर में मेरी रोज की जिम्मेदारियां तय है, जैसे सुबह चाय नाश्ता बनाना, घर को व्यवस्थित रखना, कपड़े तय करना और घर के छोटे मोटे काम संभालना। क्या बात है निधि, क्या बात है, और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभाती हैं, इस बात की हमें पूरी उम्मीद। मैडम जी नमस्कार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा राय, अक्षय कुमार, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय हमारे मैडम जी आने वाली हैं लिखा होगा शायद उन्होंने, आलू के चक्कर में उतारे जा रहे हैं, जिससे आलू के छिलके उतारे जा रहे हैं, जिससे हमें आज के घर पर सेवैयां बनेंगी और बनेंगी। अच्छा, कुछ और बनेगा उन्होंने लिखा है, जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आपको और पूरे एफएम टीम को, रेनबो और पूरे जिसमें लस्सर को, सबको मैं कहना के लिए, खाने के लिए दावत देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये नाम इन्होंने लिखा है थे कन्हैया लाल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आलू की जो इतने सारे काटे जा रहे हैं और छिले जा रहे हैं, और उसमें अगर आप बैठ के थोड़ी हेल्प कर दें उनको तो बहुत अच्छा लगेगा उनको भी, है ना। जान जी वाले क्या लिखा है, वॉशिंग मशीन नहीं करता, खाना पकाना, झाड़ू, अच्छा वॉश मशीन, यही लिखा है इन्होंने, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, सब्जी लाना और नया ने क्या, सनी कपूर जर्मनी से ऐसा लिखते हैं जी, बहुत अच्छा करते हैं आप। और हमने तो सुना है विदेशों के, जो बाहर के देशों में है ना, वहाँ पे आपको घर में जो हम लोग के हाउस काम करने वाले होते हैं उनको नहीं मिलते, वहाँ पे सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। शुभ संध्या, आज का टॉपिक बहुत अच्छा। हम सुबह पहले 5 बजे उठकर प्रतिदिन योग करते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाता हूँ, मेरी पत्नी पोछा लगाती, मिलजुल कर काम करने से अच्छा लगता है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी ऐसा लिखती है, आलोक जी बहुत बहुत अच्छा करते हैं आप। अच्छा, अगला मैसेज, एक बहुत बड़ी सी फोटो भेजिए, खेत की फोटो भेजिए, सोयाबीन फसल है जी, बहुत अच्छी फसल आपकी लहलहाती लग रही है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने नाम नहीं भेजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए और इतनी गांव का सीन दिखा देने के लिए, खेत का। घर के काम तो नहीं, बाहर साथियों के बैंकिंग समस्याओं, परोपकारी कार्यों के लिए व्यस्त रहता हूं। अभी खुद के प्रयास से कई बैंकों को तैयार करवाया कि वृद्ध वरिष्ठ नागरिकता दिवस 21 अगस्त को बड़े स्तर पर मनाने के लिए क्षेत्र के ब्रांचों को तैयार करवाया है। अनिल शर्मा जी लिखते हैं, जो वरिष्ठ हमारे श्रोता है सरिता विहार से, अनिल जी बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन अगर आप घर पे थोड़ा बहुत तो कुछ करते होंगे, अगर वो बता दे तो मैं बहुत अच्छा लगता। सबसे पहले प्रकृति ही हमारा घर है जो समझे, कविता जी ऐसा लिखते हैं। बिल्कुल, प्रकृति तो यकीनन घर ही, हमारी प्रकृति में ही बना हुआ घर है, लेकिन घर को अगर हम साफ रखते हैं ना, तो घर से जो शुरुआत होती है उसी के बाद ही हम प्रकृति के पास जा पाते हैं और हर चीज़ को हम सफाई की नज़रों से देखते हैं। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक रखा था कि घर के बाहर आप कितनी सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन आज इसीलिए हमने घर के अंदर का हाल जानना चाहा है आपसे कि आप घर के अंदर की कैसी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो अगला गाना हम सुनते हैं और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। हम तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं जनाब।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और जिसमें हम लेकर आए हैं आपके मैसेजेस आप ही के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है प्रवीण चौहान जी का, खरगोन मध्य प्रदेश से। लिखते हैं कि घर का ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जिसको मैंने नहीं किया। मैंने घर की क्लीनिंग से लेकर कुकिंग से लेकर घर के सभी काम किए, वो भी कुशलतापूर्वक। इस मामले में मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। छोटी बच्ची को भी संभालना जैसे एक माँ संभालती है, वैसे ही संभाल लेता हूँ मैं। प्रवीण जी, क्या बात है, क्या बात है प्रवीण जी। लिखा आपने बहुत अच्छा है, किया हो आपने या नहीं किया हो इसका मैं तो नहीं पता, लेकिन आपने लिखा तो यकीनन किया ही होगा। साहिल सुमन फ्रॉम हैदराबाद से लिखते हैं, यूँ तो हम फैमिली से दूर अकेले रहते हैं जॉब के लिए हैदराबाद जैसे बड़े शहर में, बट एक आदत जो बचपन में सीखी थी वो है कि फॉलो करता हूँ। सुबह सुबह उठकर प्लांट्स में पानी देना, मेरे पास 5 प्लांट्स हैं और अभी, और हर सुबह उठकर पानी देता हूँ। फील होता है जैसे अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ बैठकर सुबह के नाश्ता हो रहा है। अनजान शहर में प्लांट्स ही फैमिली बन जाती है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा करते हैं साहिल सुमन जी आप, और बहुत ही अच्छी बात है। हम अगर चाहें तो हम चाह कर भी अकेले नहीं होते, और हम अगर ना चाहें तो हम चाह कर भी अकेले होते हैं, है ना। नमस्कार चांद, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और आज के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग घर में काफ़ी काम करते हैं, जैसे कि बाजार से सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, और कभी कभी पत्नी जी की तबीयत खराब हो तो झाड़ू पोछा, गमलों में पानी डालना, और ये वो सब कुछ कर लेता हूँ। क्या बात है, आजकल मतलब आज इतने मतलब मेल लोगों के फोन आ रहे हैं, मेल मेंबर्स के, मेल दोस्तों के, कि ऐसा लग रहा है कि सारे काम पुरुष ही करते हैं। लेडीज के तो कमी आ रहे हैं वैसे कहने के लिए कि वो काम करती है कितना, है ना। अगला मैसेज हमारे पास आया है जोया जी का, आया मेलबोर्न से। वो रोज, अक्सर ही रोज नहीं, रोज ही करती हैं, लगभग हर पल हमारे हर प्रोग्राम में मैसेज में मैसेज करती हैं। आई डू एवरीथिंग, हाउस क्लीनिंग, कुकिंग, शॉपिंग, लॉन मोइंग एंड डिश आर वॉशिंग बाय डिश वॉशर एंड क्लोथ वॉश बाय वॉशिंग मशीन। आई हैव टू वर्क एज वेल, आई गॉट मनी टू लिव, आई डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, I do things when I desire. Wow, जब आपका मन करता है आप तब करते हैं, और सब कुछ आप करते हैं, सब कुछ। जी हाँ, हमने से सुना है विदेशों में ना सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, वैसे आप अकेले रहते हो ना, तब भी आप विदेश में रहो, घर में रहो, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। बस वही हम ज़्यादा चाहते हैं कि घर में रहकर अगर आप भरे पूरे परिवार में रहते हैं, और अगर नहीं भी रहते तो भी घर की कौन सी जिम्मेदारी को आप रोज़ निभाते हैं, रोज़ रोज़ मतलब रोज़। मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक में, मैं तो जो जयपुर में हूँ, और मैं हमको खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, मम्मी पापा बीवी बच्चे, ग्राम आंधी पोस्ट भागलपुर जिला कानपुर में रहते हैं। जावेद आलम मोहम्मद जयान

जयपुर से लिखते हैं, मतलब इतने सारे मेल हमारे फ्रेंड्स हैं वो सारे मैसेजेस कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है आज का टॉपिक पे कि सारे जितने पुरुष हैं वही काम करते हैं, मतलब लेडीज कम ही कर दी, ऑल हाउस होल्ड क्या लिखा है उन्होंने, वर्क स्वीपिंग मॉपिंग वॉशिंग डिशेज वॉशिंग क्लोथ्स इन मशीन डस्टिंग एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी बनाती हूँ, कटिंग चॉपिंग सब्जी आने पर वॉश करके फ्रिज में भी रखना पड़ता है, आयरन मेक लिस्ट ऑफ टाइम टू बींग एंड वॉच टीवी रील्स चैट विद फ्रेंड्स एंड अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वन मैरिड एंड अनदर वन इज हॉस्टल, सो उनके काम तो नहीं है अब, अदरवाइज उनके लिए स्पेशल फूड भी बनाना पड़ता था, बट आई एंजॉय ईच एंड एवरी वर्क। शैलजा फ्रॉम नीमारा निमारा निमान निमराना से लिखती है जी, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और एक तो अब तो स्पेशल काम जुड़ गया है कि रील्स देखना, अपने मोबाइल में चैनल्स घुमाना और उनको एंजॉय करना, ये भी एक काम में जुड़ गया है, ऐसा इनके मैसेज को पढ़ के वैसे लगता है। मेरी प्यारी प्यारी पूर्णिमा की चांद को गुड इवनिंग डियर, बिफोर मैरिज टू आफ्टर 8 क्लास कपड़े धोने की जिम्मेदारी मेरी थी, बट आफ्टर मैरिज तो सभी जिम्मेवारी मेरे ही सिर पर थी क्योंकि इन लॉज नहीं थे। हाँ, सब्जी लाना कभी नहीं गई कभी नहीं गई थी, बट वो जिम्मेदारी भी साहिब जी के आने के बाद निभा रही हूँ, बट डियर मैं हर तरह से खुश रहती हूँ। मिसेस धर्म भाटिया जी रोहतक से ऐसा लिखती है, धर्म भाटिया जी आपके मैसेज पढ़कर लगता ही है कि आप हमेशा खुश रहती होंगी और आप खुशी बांटती भी होंगी, और ऐसा ही होना भी चाहिए हमें, है ना, चाहे हम घर में अपने सदस्यों से बात करें परिवार के या बाहर के किसी सदस्य से बात करें, है तो हमारे देश का सदस्य ना, है तो किसी ना किसी तरह से तो वो सदस्य है हमारा ही अपना, तो अगर हम सबसे अच्छे से बात करेंगे रहेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा हम सब के लिए। नमस्कार जी, कैसे आप, हम तो अच्छे। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर जी, ये इनका रेगुलर मैसेज है जो ये हर प्रोग्राम में भेजते ही भेजते हैं। अब हम आपको गाना सुनाएंगे, बेहतरीन सा ट्रैक है, इंजॉय करिए, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

0: दोस्तों, पहले इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं और आपके मैसेजेस पढ़ें, उससे पहले हम आपको एक नहीं बहुत ही पर्सनल बात बताना चाहते हैं। प्लीज किसी से बताइएगा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों हमने बहुत कोशिश की, बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आज तक हमें आटा गूंधना नहीं आया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम मैसेजेस लेकर आ जाएंगे, और हम आ गए। और हमें उम्मीद है कि जो भी हमने आपको अपनी बातें कही हैं वो सिर्फ आप तक रखेंगे और आप किसी से भी शेयर नहीं करने वाले। नमस्कार, हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल का काम एक्सक्लूसिवली मेरे पास होता है, बाकी सब कुछ हम शेयर कर लेते हैं। आई बिलीव बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ओके, ये काम आपके जिम्मे पे है और आप करते हो इसको, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी जी, सिमरन मुखी जी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं वो, और घर में सबसे पहले सुबह बड़े काम होते हैं, सबकी दूसरे की इज्जत करें और प्यार से रहें। जिस घर में प्यार होता है वहाँ हमेशा भक्ति बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। अच्छा जी, बिल्कुल सही आपने बात लिखी है मुखी फैमिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले के बड़ावन गांव से लिखते हैं, मेरी दुकान है यहाँ पे, ये कचौरी समोसा बनाता रहता हूँ, यही मेरा काम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया करते हो। घर जाके तो आप इतना थक जाते होंगे कि वहाँ पे तो कुछ नहीं करते होंगे, आई एम 110% श्योर। घर का सिर्फ एक काम है इनका, नित्य दूध मिल्क से बूथ से दूध लाना, यही काम करता हूँ। अनिल शर्मा जी ने दोबारा मैसेज करके बता ही दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसे ही मैसेज हमारे पास आया है लाजपत नगर गाजियाबाद से, रुद्राक्ष शर्मा जी लिखते हैं कि चांद नमस्ते, मैं सुबह सुबह दूध लेने जाता हूँ और कूड़ा डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। क्या बात, इतना बड़ा काम जो आप कर देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। MMM आई एम राजेंद्र भाटिया फ्रॉम कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, और मेरी वाइफ दोनों ब्लाइंड पर्सन है, इसलिए अपने घर के काम खुद करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए खाने के साथ मुझे घर का सारा काम आता है। मेरी वाइफ का नाम इंद्रानी देवी है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, ये ऐसे लोग होते हैं ना जो हम छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंस्पिरेशन बन सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं यस हम तो वो भी कर सकते हैं ना, जब वो कर सकते हैं तो हम तो और अच्छे से कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। मैसेज बार बार पढ़ा नहीं आपने, मैंने लिखा है, मैं भी घर के सभी काम करता हूँ, किराना लाता हूँ, बाजार में जाता हूँ। विजेंद्र अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। अरे जनाब, आपके मैसेज पढ़ने के लिए ही हमें यहाँ मैसेज मसाले मिक्स में चांद नमस्ते, मैं सुबह दूध, अच्छा जी ये सब दूध लेने वाले भी मैसेज करते हैं इन्होंने, भरत अच्छी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया, दोबारा मैसेज आपने किया रुद्राक्ष जी। मैसेज मसाला मिक्स में आपको प्यार भरा नमस्कार आदाब, बरसो। बनावटी बातें मुझे पसंद नहीं आती, मुझे नहीं आता घर में

डॉली ने ऐसा लिखा है, लवली सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी आपको मैसेज करने के। नमस्कार चांद, घर के काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जो भी काम हो समयानुसार सभी को करने पड़ता है। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर है। और अगला मैसेज हमारे पास आया है हीरामणि वर्मा जी का, दंतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, घर से घर के मेडिकल फिटनेस संबंधित राशन संबंधी संबंधित डिपार्टमेंट मेरा रहता है हमारे घर में जी। बहुत अच्छी बात है हीरामणि जी, बस हम यही जानना चाहते थे कि घर में आप सब अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। विष्णु प्रसाद डांगी ग्राम कुदरत तहसील ब्यावर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, घर के सभी कार्य वैसे हमें करने पड़ते हैं लेकिन कभी कभी उनसे पूछ करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ कार्य तो स्वयं करना ही सबसे अच्छी बात होती है, नारी का सम्मान करने चाहिए। विष्णु जी जैसा नाम आपका वैसा ही काम, आपकी बातें भी वैसे। नमस्ते मैडम, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, आधा दिन स्कूल बाकी घर में, फिर भी इस जिद्दोजहद में आपके मैसेज करने के लिए टाइम चुरा ही लेते हैं। राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर से, बहुत बहुत शुक्रिया राखी, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास, मैडम जी नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश जिला जयपुर जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडेला से गुड्डू कुमार रंगीला और माला देवी कन्हैया लाल जी के लिखते हैं, हम भी अपने घर के काम बताते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं, इससे इस समय हमारे घर में दाल चावल और रोटी बन रही है और पूरी FM रेनबो की टीम इसके दावत दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज दोबारा दोबारा इतनी बार करने के लिए, और बहुत बहुत सारा आप लोगों को शुक्रिया मैसेज करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और यूँ ही जुड़े रहिए, अभी पूरे पूरे 10 मिनट है हमारे पास।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों आज मैसेज मसाला मिक्स में आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा शुक्रिया। यूं ही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के साथ अपने चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए। और अगर आज का मैसेज आप मसाला मिक्स आपने सुना और आप घर की कोई जिम्मेदारी अपने आप पर नहीं लेते तो प्लीज जरूर कोशिश कीजिएगा, लीजिए और सबके साथ मिलकर चलिए। तो अभी चांद चलती है लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और 1 घंटे के बाद पूरे 1 घंटे के लिए आपसे मिलने आऊंगी।

0: That was Jim Reeves with the track Just Walking in the Rain. And it's time now for a short break. But listeners, don't go anywhere because you know we'll be right back.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: That unforgettable chorus has made Jolene one of the most covered songs in country music, and that was the original Jolene by Dolly Parton. It's time now for another short break, but don't go anywhere because you know we'll be right back with you all.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो।

नमस्कार, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39.17% ही कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा है कि विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर डालेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर मोसेस एम बेंटागुला और केन्याई संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री बिरला ने कहा कि दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित संबंधों को संसदीय सहयोग से और मजबूत किया जा सकता है। नीति आयोग ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख क्षेत्र शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चयनित ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ड्रोन, चमड़ा और जूते तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे 12 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा, स्थानीय मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण की प्रबल क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में 11 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर चाकू से हमला हुआ। उनकी हालत खतरे से बाहर है। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। चीन और रूस ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन देने की पुष्टि की है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल

इस्लाम आलमगीर को देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। मंत्रिमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित 35 पदक जीते। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टर से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती।
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी

0: को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: तो लाइफ बन जाएगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, जो चांद के साथ रहता है, रेनबो के साथ रहता है, और अब आगे आपके साथ रेशमा रहने वाली, उनके साथ रहता है, उनकी लाइफ डेफिनेटली बनती है। और आई एम श्योर, और हमने तो बहुत डांस किया, आई एम श्योर कि आपने भी बहुत सारा डांस किया होगा, म्यूजिक मस्ती में आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। अब से मिलने हम फिर आएंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के किसी न किसी प्रोग्राम में। आप हमारा इंतजार कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी हम चलते हैं, तो क्या आपका चांद जाए। बाय।

और लीजिए अब सुनिए AIR FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39.17% ही कामकाज हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। इस वर्ष जुलाई में माल और सेवा सहित देश का कुल निर्यात 80 अरब 14 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.3% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। नीति आयोग ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख क्षेत्र शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चयनित ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ड्रोन, चमड़ा और जूते तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे 12 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के प्रायोजित आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। बेल्जियम में कश्मीरी प्रवासी समूहों ने POJK की स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी राजनयिक परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर चाकू से हमला हुआ। उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित 35 पदक जीते हैं। तो ये थे अभी तक के AIR FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की रेनबो चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। कार्यक्रम का आइए शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम है आपकी याद आती रही।

प्यार की कहानियाँ, क्या बात की जाए इन कहानियों की। देखा जाए तो प्रेम की कुछ कहानियाँ इंतजार से शुरू होती हैं और कुछ मुलाकातों से, और कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती हैं जिनकी पहली ही मुलाकात में दिल को अपना हमसफर मिल जाता है। और समझ लीजिए कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी शुरुआत जुदाई से नहीं, न जाने क्यों ये लगता है कि जुदाई नहीं, दो अजनबी मिलते हैं, बातें होती हैं और फिर न जाने कब ये मुलाकात एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। यानी ये जो प्यार है ये पनपने लग जाता है, एहसास हो जाता है इस प्यार का, इस प्रेम का, और ये कहानी अपने आप बनती चली जाती है।

बेशक किसी से प्यार हो जाए तो इंसान संवरने लग जाता है, ये दुनिया उसे खूबसूरत लगने लग जाती है। कभी आंखें दिल की बात कह जाती हैं तो कभी खामोशियों ने जो रिश्तों का नाम दे देती हैं वो भी हमसे कुछ कह जाती हैं। साथ बिताया हर पल इस प्रेम कहानी को और ज्यादा गहरा करता चला जाता है। कहते हैं सच्चा प्यार वही होता है जिसमें पहली मुलाकात ही आखिरी मंजिल बन जाती है और एक खूबसूरत सफर कहलाता है। तब एहसास होता है कि हाँ, यही तो है वो प्यार जिसकी तलाश में थे हम।

और जनाब, अगर ये प्यार हो जाए तो समझ लीजिए प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास जानते हैं कौन सा होता है? सबसे खूबसूरत एहसास होता है उससे दूर जाने का डर, उसके बिना दिल न लगना। साथ रहने की आदत ऐसी पड़ जाती है कि कुछ पल की दूरी भी दिल को अक्सर बेचैन कर जाती है। दिल बार बार यही सोचता है, अगर वो दूर चला गया तो किससे कहेंगे दिल की बात, किसके साथ बांटेंगे अपनी खुशियां और किसकी आवाज में ढूंढेंगे अपना सुकून। वो कहते हैं ना कि सारा मसला तो उसी सुकून का है, सारा मसला तो उसी सुकून का है जो तुझे देखने के बाद मिलता है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद।

बेशक जनाब, दिल तो यही करता है कि जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं उसके लिए ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है। यूं लगता है कि कुछ और जिंदगियां हों उसके साथ बिताने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए। इसीलिए ये दिल बार बार डरता है कहीं वो हमसे दूर न चला जाए। और ये जो रिश्ता दिल के बेहद करीब होता है, उसके दूर जाने से ये दिल हमेशा डरता है। क्योंकि जब कोई अपना बन जाता है तो उससे दूर होने का ख्याल भी, आंखों में नमी और दिल में एक अनजानी सी घबराहट पैदा कर देता है। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि ये दिल बहुत प्यार करता है उससे, बेहद बेइंतहा।

किस कदर खूबसूरत है बात, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। और वाकई ये बात कहने में कई बार बरसों लग जाते हैं। और ये जो प्रेम कहानी है, ये जब अपने उरूज पर पहुंचती है तो समझ लीजिए कि इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है। चलिए, मोहब्बत की बातें ऐसे ही जारी रहेंगी आपके साथ, जरा आपकी मोहब्बतों को भी देख लें। सौरभ अनिजा हमारे साथ हैं, लिखते हैं वेलकम बैक, थैंक्स अलॉट सौरभ अनिजा जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं कौन, मोहम्मद कोनेन बिहार बेगूसराय से, आपकी याद आती रही, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो जाता है और सुबह जब जागते हैं तो दिन बढ़िया गुजरता है। लाजवाब क्या बात है, सुबह और शाम अगर खूबसूरत हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। अमरावती महाराष्ट्र से गुड इवनिंग आरजे रेशमा जी, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, और मैंने आपका पिछला कार्यक्रम 6 अगस्त 2026 को सुना था। चलिए, आप याद रखते हैं और हमें क्या चाहिए, और यकीन मानिए हम भी आप सबको दिल से याद करते हैं। सावन की बारिश में जब शहर सो जाता है, भीगी हुई सड़कों पर अतीत जाग जाता है, हर बूंद कोई पुरानी कहानी कहती है, हर खामोश रात भीतर तक कुछ कहती है। हम समझते रहे कि बारिश सिर्फ पानी है, फिर जाना हर बूंद में एक जिंदगी रवानी है। शहर बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मगर कुछ लोग यादों में उम्र भर रह जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा जनाब, ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हर दर्शन बाजार जिला अररिया बिहार से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, दिल को छू गई आपकी हर बात, हर एक लफ्ज, बहुत शुक्रिया। और ये हमें लिखा है, किसने आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया, सभी गीत पसंद आ रहे हैं, कस्बा गुनौरी यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ लिखते हैं कि वेरी हैप्पी एंड हेल्दी थर्सडे, गुड इवनिंग, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, आपकी याद आती रही, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन एंड ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स ऑफ 1990s हेरा, योर बिग थैंक्स फॉर एक्सलेंट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। एंड मैं भी आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही सुनते रहिए प्रोग्राम। और यकीन मानिए हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा पहुंचाया जाए आप तक, कुछ ऐसी बात की जाए कि ये जो एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें कुछ पल हम सुकून के गुजार सकें। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही, कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, गीत और संगीत बेहद पसंद आ रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हाय, हमें किसने लिखकर भेजा है, आपने दोस्त अपना नाम नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, बेहद प्यारे गीत लग रहे हैं, और सही कहा, सबसे ज्यादा डर जुदाई का लगता है, डॉली हमें लिखकर भेजती हैं। बिल्कुल डॉली, आपने सही कहा, ये जो डर होता है ये इंसान को बस उसका यही रहता है कि बस जो अपना है वो हमारे ही पास रहे, कहीं जाए ना, यादें शिकवा ना कोई, गिला देंगे हम बेरुखी का, ऐसा ऐसे सिला देंगे हम, बेशक ये तपिश अपना नसीब सही, लेकिन चांद की रोशनी में सबको नहला देंगे हम, मेरी आहट बिगर अब गवारा ना हो तो तेरी गलियों को कल से भुला देंगे, दफन हो जाएं जहां सारी यादें, जहन को वो गहरा खला देंगे हम, मगर जानता हूं ये मुश्किल बहुत है, बस आसा है, खुद को मिटा देंगे हम, शिकवा ना कोई, गिला देंगे हम, बेरुखी कैसी सिला देंगे हम। प्रेमचंद प्रेमी जी हमें लिखकर भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और आगे लिखते हैं, शानदार पेशकश, हमें फ़ख्र है आप पर, और प्रेमचंद जी हमें आप पर फ़ख्र है, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप प्रोग्राम सुनते रहिए, और प्रोग्राम को पसंद करते ही हैं आप, और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको प्रोग्राम, आप सबको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद प्रेमी जी। और नमस्कार मैम, ब्यूटीफुल लव सॉन्ग्स प्रोग्राम, प्लीज कन्वे माय मैसेज टू माय हार्ट आकाश, और मैं समझ गई ये हमें तुम्बा पॉल ने लिखा होगा, रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली से, देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ही लिखा है, प्लीज स्टे स्माइलिंग, फेस बी केयरफुल,

जी हाँ, प्यार को बस हो ही जानी दीजिए, प्यार को रोकिए नहीं अगर ये आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है तो। दरवाज़ा खोल दीजिए जनाब, ये दरीचा खोल दीजिए, क्योंकि इसको अगर आपने आने दिया तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो सकती है। और कासगंज से मास्टर राधेश्याम लिखते हैं, गुड इवनिंग मैम, प्रोग्राम सॉन्ग मस्त मस्त प्ले हो रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट मास्टर राधेश्याम जी। और अजय कुमार मोहाली पंजाब लिखते हैं, गुड नाइट मैम, वेरी वेरी गुड नाइट, और बहुत ही प्यारी आवाज़, नाइस एंड ब्यूटीफुल नाइंटीज सॉन्ग। पारस हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ, और मैसेज बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत बढ़िया गाने आपने प्ले किए। ज्योति कुमार हैं बेंगलोर से हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से गुड इवनिंग लिखते हैं, वेलकम बैक टू यू शो मैम, आपकी याद आती रही। और इसके अलावा आपने सारे ही गाने हमें हमेशा की तरह लिखकर भेज दिए हैं जो हमने अब तक प्ले किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सभी को, बल्कि मुझे तो लिखना चाहिए, कहना चाहिए कि अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि मैंने कौन कौन से गीत प्ले किए हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने बहुत ही प्यार और बहुत ही तवज्जो के साथ प्रोग्राम सुना, महसूस किया इस मोहब्बत को। और वाकई ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है।

और प्यार उस सफर का वो एहसास है जो हर मोड़ को बेहद खास बना दिया करता है। कभी प्यार हमें मुस्कुराना सिखाता है, कभी किसी के लिए इंतजार करना सिखाता है, और कभी बिना कहे किसी के दिल में अपनी बात समझा देता है या पहुंचा देता है अपनी बात। जिंदगी में दोस्त बहुत ही कम लोग मिलते हैं, कुछ याद बनकर रह जाते हैं और कुछ हमारी पूरी दुनिया का, ये समझ लीजिए, हिस्सा बन जाते हैं, पूरी दुनिया पर कहना चाहिए काबिज हो जाते हैं। ऐसे ही किसी अपने का साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी लेकिन आसान हो जाते हैं। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी में खुश होना, मुश्किल वक्त में हाथ थामना और हर हाल में साथ निभाने का वादा है दोस्त। क्योंकि आखिरकार खूबसूरत जिंदगी वही है जिसमें जीने की वजह भी हो और उस वजह को प्यार करने वाला कोई अपना हो। तो बस इसी अपनेपन के साथ जिंदगी को गुजारिए, क्योंकि जो आपका है वो बेहद खूबसूरत है, बेहद प्यारा है। और जिंदगी में मोहब्बत को जरूर जगा दीजिए, क्योंकि इसके बिना जिंदगी बेरंग है। मिलूंगे आपसे 11 बजे, बल्कि कहना चाहिए 11:05 पर प्रोग्राम रंगी महफिल में। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।

0: We love you too, Sarah. That was Sarah Vaughan reminding us that a great melody can become timeless in the hands of a great artist. Listeners, it's time now for the first break of this session of our program, All That Jazz. But do not worry. Do not worry, because we'll be back very soon. Even before you'd blink, we'd be here. So don't go anywhere and keep listening to Akashvani FM Rainbow, broadcasting at 102.6 MHz.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक.
0: Welcome back, listeners. You're tuned to Akashvani FM Rainbow, broadcasting at 102.6 MHz. The program is All That Jazz. And now, in this session of our program, we welcome another legendary voice, Frank Sinatra. Frank recorded over 1,000 songs during his remarkable career, and his phrasing remains a masterclass in storytelling through music. So, here's My Way by Frank Sinatra.

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 मेगाहर्ट्ज़। द प्रोग्राम इज ऑल दैट जैज़ एंड इन दिस सेशन ऑफ आवर प्रोग्राम नाउ इट्स टाइम वी मूव इनटू कंटेम्पररी जैज़ विद द वंडरफुली वर्सटाइल एल जर्रो। His ability to blend jazz, pop, soul and vocal improvisation made him truly unique. So here's You Don't See Me by Al. Get it.

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भी देशभर से आए व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। तो ये थी अभी तक की AIR FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। आदाब सामईन, प्रोग्राम रंगी महफिल में आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रोग्राम है रंगी महफिल। रंगी महफिल में चलिए आज बात करने की कोशिश करते हैं उस चेहरे की जो दिल के बेहद करीब रहता है, उस चेहरे की जिसको हम कोई नाम नहीं दे पाते। कई बार लगता है कि वो चेहरा एक किताब है जिसके हर सफ़े पर कोई न कोई कहानी लिखी है, लेकिन हम हर कहानी को पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर एक शायर की बात करें तो शायर चेहरे के उतार चढ़ाव, आते जाते हुए रंग सबको बहुत आसानी से पढ़ लेता है और अपने लफ्जों में एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, गजल ऐसे

वो देता है कि यूं लगता है कि ये चेहरा वही है जिसकी हमें तलाश होती है। इस चेहरे पर कई बार किसी की याद के बादल मंडरा जाते हैं और कई बार ये चेहरा खिल उठता है किसी को देखकर।

बेशक चेहरे पे खुशी छा जाती है उस चेहरे को देखकर। दरअसल चेहरा महज चेहरे का ही नाम नहीं, चेहरा तो मुझे लगता है वो आईना है जिसमें इंसान का दिल दिखा

दिखाई देता है और जब बात उस चेहरे की हो तो ये कहा जा सकता है कि शायरी में या फिर शोरा हजरात ने बहुत ही खूबसूरत बातें कही हैं। उर्दू के शायरों ने चेहरे को कभी चांद कहा, कभी गुलाब, कभी आफ्ताब और कभी ऐसा नूर जिसके सामने चांदनी भी फीकी लगती है। मगर महबूब का चेहरा सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वो शायर का एक एहसास बन जाता है, एक ऐसा दीदार जिस पर पूरी गजल कही जा सकती है। बशीर बद्र साहब कहते हैं, वो चेहरा किताबी रहा सामने, वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई।

आई रोशनी तेरी अंगड़ाइयों से मिली जहन दिल को नई रोशनी।

उसे एक चेहरे में आबाद थे कई चेहरे, उसे एक चेहरे में आबाद थे कई चेहरे, उसे एक शख्स में किस किस को देखता मैं, उसे एक शख्स में किस किस को देखता मैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और वाकई ये जो इश्क है जनाब, अगर इसका आप इजहार नहीं कर पाएंगे उस चेहरे को देखकर जो चेहरा आपके दिल के बेहद करीब रहता है, तो ज़रा सोचिए फिर कैसा कैसा एहसास होगा आपको। कहते हैं कि अगर शायरी की बात की जाए तो महबूब का चेहरा अक्सर चांद से उसका एक शायर मुकाबला करता है। चांद तो वैसे हर रात निकलता है, कभी पूरा कभी आधा, और कई बार ये बादलों में भी छुप जाता है, लेकिन किसी अपने का चेहरा वो तो हर हालत में अपने करीब ही लगता है। उदास हो तो भी खूबसूरत, खामोश हो तो भी खूबसूरत, नाराज हो तो और दिल के करीब, और जब मुस्कुराए तो समझ लीजिए पूरी दुनिया पूरी कायनात रोशन हो जाती है उस चेहरे को देखकर।

0: थी ऐ हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर।
1: बेशक हर एक शायर अपनी निगाह से देखता है और जो उसकी सोच होती है वो कागज पर उतार देता है। कई बार यूं भी होता है कि कोई चेहरा ऐसा भी होता है जिसे देखने के लिए हम तरसते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि तसव्वुर में उस चेहरे के बारे में सोचते हैं कि क्या है वो, क्या वो चेहरा कभी जिंदगी में शामिल होगा या फिर हमेशा के लिए ये ख्वाब था, ये ख्याल था।

बेशक ख्वाब था या ख्याल था, क्या था। और वाकई अगर ये बात समझ आ जाए या फिर वो चेहरा नज़र आ जाए तो बात ही बन जाती है। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत लम्हा शायद वो होता है जब कोई आपको देखे और आप उसकी आंखों में अपना चेहरा देख लें। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस एक नज़र, और उस एक नज़र में पूरी गजल। शायर इसी एक नज़र को कभी दीदार कहता है, कभी नज़रे करम कहता है, और कभी ये भी कहता है कि ये मोहब्बत की पहली निशानी है। और शायर बार बार उस चेहरे से कहता है कि इस चेहरे को कोई और न देखे, देखे तो बस उसी की आंखें देखें।

चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका चर्चा है। वाकई ये जो चर्चा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बहुत खूबसूरती के साथ किया है शायर ने। और जगजीत साहब तो आप जानते ही हैं कि जब भी कुछ गाते हैं तो सीधा दिल पर असर होता है, और हर गज़ल हर शेर यूँ लगता है कि ये वाकई अपनी ही कहानी है। और आपकी कहानियां भी जनाब हमारे साथ हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से अनुभव लिखते हैं कि आदाब, आप कैसी हैं, और लिखते हैं कि मैं ठीक हूं और मैं भी आपको सुन रहा हूं, आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, शो भी अच्छा लग रहा है, और अनुभव हमें तो आप अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोग्राम को सुनने के लिए। और कभी सरसों कभी गुलमोहर कभी गुलाब बनकर खिलेंगे, अब कुछ यूं ही महका करेंगे तेरी यादों के मौसम। आज मौसम बहुत भीना सा है, आ धीरे धीरे गुनगुना लूं तुम्हें। देव अपने अलग अंदाज में लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया देव बहुत ही खूबसूरत अशार हम तक पहुंचाने के लिए। आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौरी यूपी से, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गजलें अच्छी लग रही हैं, लिखते हैं मन भावन मस्त कार्यक्रम, चलिए। और लिखते हैं कि मन से बड़ी वाली बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई।

आप ऐसे ही सुनते रहें प्रोग्राम और आगे लिखते हैं कि आपकी रात्रि और जीवन बहुत मंगलमय हो। हम भी आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और तुम भले ही मुस्कुराओ साथ बच्चों के, मगर बच्चों जैसी मुस्कुराना दोस्तों आसान नहीं। सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से, आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत आनंद आ रहा है और आपका जो आपने ये लिखा है, अपने दिल से लिखा है, आप यकीन मानिए हमें भी बहुत आनंद आया कि बच्चों जैसी मुस्कुराहट अगर हम अपने चेहरे पर ले आएं तो बात कुछ बन सी जाती है। और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं दोस्त। और इसके अलावा कौन है हमारे साथ, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन आंखों के बारे में एक से एक उम्दा गज़लें चुनकर लाई हैं आप, थैंक यू सो मच। और आंखों को रहने दो आंखों के आसपास, और आपने शाम को यादगार बना दिया, बहुत शुक्रिया। अरुण कुमार रावत फ्रॉम हैदराबाद से, और ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर हैं आप, ओके, आप हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपनों पे गुरूर आ जाता है, बहुत सुंदर। और ख्वाब था या ख्याल था, यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत है और दिल से सुनने वाली चीज़ें हैं, और जब जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि वाकई बहुत ही खूबसूरत अशआर और बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया गया है जो सीधा दिल पर असर होता है। और जयंत हैं पटना से, लिखते हैं स्वागत है आपका, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जनाब बातें हो रही थी आपके साथ चेहरे की, चेहरा यकीनन बेहद खूबसूरत हुआ करता है लेकिन चेहरे के साथ साथ जब जुल्फ उसकी खमदार हो, जुल्फ उसकी खूबसूरत हो तो इस दिल को अपने साथ बांध लिया करती है, यानी चेहरे के साथ साथ जुल्फ का भी अपना एक अलग ही किरदार हुआ करता है। और ये जुल्फ एक ऐसी शय है महबूब के चेहरे पर जब गिरती है तो दिल समझ लीजिए कि अपनी जानिब खींच ही लेता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे शायर हजरात हैं उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन जुल्फों पर बहुत कुछ कहा है।

आपने इस खूबसूरत शाहकार को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना, महसूस किया, और आपने एक चीज़ और महसूस की होगी कि रफ़ी साहब ने इस जो शाहकार हमने अब तक पहुंचाया है, इसमें जितनी बार भी अच्छा लफ्ज़ आया है, एक बार भी अच्छा का जो अंदाज़ है वो रिपीट नहीं हुआ है। हर बार एक नया अंदाज़ दिया है। जी हाँ, यही थी रफ़ी साहब की महारत। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये ज़ुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, और वाकई ये चेहरा और ख़ूबसूरत हो जाता है इन ज़ुल्फ़ों के साथ। कई बार आपने भी देखा होगा अपने चेहरे को आईने के सामने, शायद वहाँ आपको सिर्फ अपना ही चेहरा दिखाई देता होगा। वहाँ आपने अगर महसूस किया होगा तो उस चेहरे में गुजरा हुआ कल होगा, आज की थकान होगी, और फिर आने वाली कल की उम्मीद होगी। और शायद किसी की मोहब्बत भी चेहरा वही है, लेकिन हर उम्र में ये कहा जा सकता है कि चेहरा यानी कि चेहरे का मतलब बदल जाता है। अब देखिए ना, बचपन में हमारा चेहरा कितना मासूम होता है, और जब जवानी में इसमें ख्वाब आ जाते हैं, मोहब्बत में इंतज़ार, और उम्र के साथ साथ ये कह सकते हैं कि एक पूरी दास्तान। वाकई अजब है जनाब ये चेहरा, लेकिन कुछ भी कहिए, शायर के लिए और महबूब के लिए ये चेहरा चौदहवीं की चांद से कम नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर समय हुआ है रात्रि के 12 बज चुके हैं और अब सुनिए हिंदी में मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के लिए कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के

पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोवा नयांती के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भी देश भर से आए व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नए रूप में तैयार इंडिया कोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से विभिन्न कानूनी जानकारी लोगों को एक ही जगह आसानी से उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। रात के 12:03 हो चुके हैं और अब शुरू होता है नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का सिलसिला, जिसमें अब आप सुनेंगे बिना रुके गाने, यानी कि एक के बाद एक जीरो आर शो में। तो अभी बस गानों की शुरुआत करते हैं और जुनूनियत मूवी से अरमान मलिक की आवाज में इस गाने के साथ गानों की लड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो बस एक के बाद एक गानों का मजा लीजिए और गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सिलसिले एल्बम से आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में ये वाली गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। रात के 12:38 हो चुके हैं। जीरो आवर शो में नॉन स्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक और कुछ गजल का आप मजा ले रहे हैं। तो अब इस गाने को सुनिए, अगला गाना फ्रॉम द मूवी ताल, अलका याग्निक की आवाज में।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

आधी रात के 1 बज चुके हैं और आप सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता

अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों को और मजबूत करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नए रूप में तैयार इंडिया कोड पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से विभिन्न कानूनी जानकारी लोगों को एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक चलता ही रहता है रात पूरी रात। और अभी शुरू होता है कार्यक्रम सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने। तो शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आ अब लौट चले मूवीज के इस गाने के साथ, और इसके साथ ही गानों का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हो जाएगा। तो बस ऐसे गानों की दुनिया में खो जाइए और रात का मजा लीजिए।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

कॉकटेल टू मूवी से आपने गाना सुना प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाज में सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर। टाइम हुआ है रात के 1:26 और शो का नाम है सुहानी रात, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक का मजा आप ले रहे हैं। और अभी आप सुनिए अनुज जैन की आवाज में ये वाला गाना, और फिर इस गाने के बाद आप सुनेंगे दो बैक टू बैक 90s के गाने। तो ऐसे ही सुनते रहिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। आधी रात के 1:44 हो चुके हैं और शो का नाम है सुहानी रात, जिसमें आप कुछ 90s के गाने और कुछ नए गानों का आप मजा ले रहे हैं। तो अभी आप सुनिए सैयारा गाना और फ्रॉम द मूवी एक था टाइगर, मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाज में। ऐसे गाने चलते रहेंगे, गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

यारो दिलदारा मूवी से आपने ये वाला गाना सुना, कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है सुहानी रात, जो कि 2 बजे रात के पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप सुनेंगे मुख्य समाचार। लेकिन ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों का सिलसिला चलता रहेगा, तो सुनते रहिए।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और आप सुनिए मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा एक कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों को और मजबूत करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नए रूप में तैयार इंडिया कोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से विभिन्न कानूनी जानकारी लोगों को एक ही जगह आसानी से उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

आधी रात के 2:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भलाई ना बने, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और वो गाने सुनेंगे जो आप भूल चुके हैं लेकिन हैं बड़े अच्छे। तो शुरुआत करते हैं तक्षक मूवी के इस गाने के साथ सुजाता त्रिवेदी की आवाज में, और ऐसे ही गानों की लड़ी चलती रहेगी तो गानों की दुनिया में खो जाइए।

चाहत से ज्यादा समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ।

रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

केके की आवाज में आपने सुना काइट सर्फन से ये वाला गाना, और आप सुन रहे हैं शो भुलाए ना बने, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं। रात के 2:43 हो चुके हैं और अब दीपाली साठे की आवाज में सुनिए फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी।

0: हाइट मस्ती।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आधी रात के 3 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और आप सुनिए मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान AMB पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ऑल ओवर चैंपियन। इसके साथ ही एफएम रेनबो के मुख्य समाचार अब यहीं समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 3:03 हुए हैं और नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का ये सिलसिला जारी है ही। और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज, जिसमें आप सुनेंगे बिना रुके गाने एक से बढ़कर एक। तो अभी शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में फ्रॉम द मूवी चमेली। तो गानों की ये शुरुआत होती है अब, और ऐसे ही नॉनस्टॉप गानों का आप मजा लेते रहिए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। सघन

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, ये लगती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे।

दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई चाल चलता है।

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 3:54 हुए हैं। आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक के मिड नाइट मेलोडीज शो में। तो अभी सुबह 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, लेकिन अभी के लिए सुनिए जोड़ी ब्रेकर्स मूवी का ये गाना।

सुबह के 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा कायदाए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे ग्वालियर स्थित स्मारक और वायु युद्ध विकास प्रतिष्ठान में फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में योग्यता हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान AMB पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और राष्ट्रीय मंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

एफएम रेनबो चैनल, सुबह के 4:03 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक में सारेगामा कार्यक्रम है और इसमें बिना रुके आप सुनेंगे एक के बाद एक हिट गाने। तो शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ और फिल्म का इसमें नाम है ब्रेक के बाद और शेखर रविजानी और सुनिधि चौहान की आवाज में गाना है। तो इस गाने के साथ ही गानों की लड़ी शुरू होती है, तो अब गानों की दुनिया में खो जाइए और मजा लीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से

आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुबह के 4:55 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल और अभी ये कार्यक्रम का नाम है सारेगामा और सुबह के 5 बजे ये कार्यक्रम पूरा होगा। फिर आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

सुबह के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हुआ। 12 विधेयक पारित हुए। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूती बढ़ोतरी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयर सोलोवा न्यांती के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। ये थे एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

सुबह के 5:02 और 52 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक और अब शुरू होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप नॉनस्टॉप भजन सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं आदि पुरुष के इस गीत के साथ, स्वर है सचेत टंडन और परंपरा टंडन के।

I'm running out of here.

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग

होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।